0: करे बढ़िया हदराल के मुस्पी करे नानक अगे सो मिले जे खट्टे काले दे महला पहला
1: ज्यों जोरू सिरन हवनी आवे बार बार जूठे जूठा मुख बसे नित नित हो ही कुवार

पौड़ी आपे ही करना क्यों कल आपे ही तै धारी है दिख है कीता अपना धर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है क्यों साह मनो विसारी है अपन हथी अपना आपे ही काज सवारी है।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਕੜੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने एक पत्र में कहा है कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का भी प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श और नेतृत्व का उदाहरण बताया। उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय

0: तांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉक्टर जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने ओमान के तट पर एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि अमरीका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। ट्रंप के अनुसार दोनों पायलटों को बचा लिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने विदेशी सेनाओं से होर्मुज जलडमरू मध्य छोड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर विदेशी सेनाएं अपनी मानवीय त्रुटियों, दुर्घटनाओं या गोलीबारी में फंसने के कारण लगातार संकट में रहेंगी। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर ही सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 864 किलोहर्ट्स, FM 100.8 मेगाहर्ट्स, FM 100.9 मेगाहर्ट्स अति DTHD आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। ज्ञान अमृत।

कहते नहीं कि कई बारी जवाब जेड़ा है ना वो शब्दां विच नहीं मिलता, सगों उस शांति विच मिलता है जो भगती सानू बख्शती है। ते इसी एहसास दे नाल प्रोग्राम च अग्गे वधदे हां। तुसीं सरवण कर रहे हो भगती संगीत दा प्रोग्राम आराधना।

हुने तुसी सुन रहे से प्रोग्राम खेती बाड़ी मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। आओ हुन सरवन करदे हां मानस गान दा 100वां भाग।

शिव के धनुष भंग और उसके ऊपर लक्ष्मण के कौतुक भरे वचन सुनकर परशुराम जी का क्रोध सीमा पार कर रहा है। उसके ऊपर लक्ष्मण का ये वचन सुनकर कि शूरवीर तो युद्ध में करनी कर दिखाते हैं, मात्र कहकर डींग नहीं मारते, ऋषिवर ने अपना फरसा संभाल लिया। बोले, अब लोग उन्हें दोष ना दें, ये मूर्ख बालक मारे जाने के ही योग्य है। बात बढ़ते देख मुनि विश्वामित्र ने अपने शिष्य के अपराध की क्षमा याचना की। कहा, बालकों के दोष गुण को साधुजन नहीं गिनते। मन ही मन वो हंसे कि परशुराम जी को हरा ही हरा सूझ रहा है। सर्वत्र विजयी होने के कारण वो राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। उन्हें कदाचित ये नहीं मालूम कि ये दो कुमार फौलाद की खांड हैं, ईख की खांड नहीं जो मुंह में लेते ही गल जाए। परशुराम की धमकियों के प्रत्युत्तर में लक्ष्मण ने एक बार फिर कटाक्ष किया कि माता पिता के ऋण तो मुनिवर चुका ही चुके हैं, अब गुरु के ऋण से भी उऋण हो जाएं

आज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब हिसाब करने के लिए यदि किसी को बुला लें तो वो थैली खोल दें। मुनि की क्रोधाग्नि में लक्ष्मण के वचन को आहुति समान जानकर श्री राम ने अनुज को शांत होने का इंगित किया।

0: तथा प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः दीर्घसमयपर्यन्तं निर्वाचित प्रधानमन्त्री भवितुम् उपलक्ष्ये उत्सवः भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणं मोदिनं भाजपा दलस्य शीर्षनेतृत्वं च समेत्य संयुत्याः सर्वे घटकाः उपवेशने भागं ग्रहीष्यन्ति इति आशास्यते। एतस्मिन् उपवेशने अनया संयुत्या शासितानां सर्वेषां द्वाविंशति राज्यानां केन्द्रशासित प्रदेशानां च मुख्यमन्त्रिणम् उपमुख्यमन्त्रिणं च समेत्य सर्वेषां घटकानां नेतारः अपि सम्मिलिताः भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः कुवैत देशस्य प्रमुखेण शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबाह इत्यनेन सार्धं दूरभाषेण संवादम् अकरोत्। उभौ नेतारौ पश्चिमैशियायां परिवर्तित सुरक्षा परिस्थितिम् आलक्ष्य परस्परं विचार विनिमयं कृतवन्तौ। प्रधानमन्त्रिणा क्षेत्रे विवर्धित आततिपूर्ण विषये गंभीरा चिन्ता प्रकटिता तथा कुवैतस्य सार्वभौमिक प्रादेशिक अखण्डतां विरुध्य विहिताक्रमणान् प्रति भारतस्य प्रतिज्ञा पुनः प्रतिपादिता। असौ शान्तेः स्थैर्यस्य च पुनः स्थापनार्थं चिन्तां न्यूनीकर्तुं संवादं पारस्परिक सहभागितां च दृढयितुं पुनरपि आह्वानम् अकरोत्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अद्यारभ्य बुल्गेरिया फिनलैंड देशयो द्विदिवसीय आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। विदेशमन्त्रालयेनोक्तं यत् डॉ जयशंकरः बुल्गेरिया देशस्य स्वीय यात्रावधौ तत्रत्य नेतृत्वेन सह मेलनं करिष्यति तथा स्व समकक्षेण सह चर्चां विधास्यति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। हुन पेश ने आज दिया मुख्य खबरां। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज तो बुल्गारिया अते फिनलैंड दे दो दिना सरकारी दौरे ते होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नवी दिल्ली विच लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS विनिमय दा उद्घाटन कीता है। केंद्रीय सेहत अते परिवार भलाई मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नवी दिल्ली विच प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSME दे 10 साल दी याद विच PMSME दे 10 साल देखभाल दा एक दहाका विषय दे तहत देशव्यापी जश्ना दी शुरुआत कीती। व्यापार मंत्रालय दा कहना है कि भारत दियां बरामदा 12 साल 886 अरब अमरीकी डॉलर तक वधियां। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 31 स्टार्टअप्स अते उना दे संस्थापकां नूं 1 करोड़ रुपए तो वध दी सीड ग्रांट वंडी। पंजाब विच झोने दी लुआई लई तीजा पड़ाव कल तो आरंभ हो गया है। पंजाब दी ट्रांसपोर्ट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जलंधर ते लुधियाना तो दिल्ली दे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक चलण वालियां 5 नवियां सुपर इंटीग्रल वॉल्वो कोच बसा नूं हरी झंडी दिखा के रवाना कीता है। अमृतसर देहाती पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियां नाल सांझी कार्रवाई दौरान सरहद पार बैठे संचालकां नाल जुड़े 2 व्यक्तियां नूं गिरफ्तार कीता है ते 2 हैंड ग्रेनेड बरामद कीते। 5वें पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी दे शहीदी पूरब मौके पाकिस्तान स्थित इतिहासिक गुरुधामा दे दर्शन करन लई अज 541 श्रद्धालुआं दा जत्था श्रोमणी कमेटी दे मुख दफ्तर तो पाकिस्तान लई रवाना होवेगा। ऐ सन अज दियां मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। प्रोग्राम सोनी सवेर नू थोड़ा जा इंतजार।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से ये आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। साड़ी स्टूडियो की घड़ी मुताबिक इस वेले सवेर के 7:03 हो रहे हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, अदाब, हसदा वसदा रहे तुहाड़ा परिवार। तो लो जी, नवी सवेर दे इस सोहने वेले हुण वेला हो चुक है तुहाड़ी मन पसंदीदा प्रोग्राम सोहनी सवेर का। तो सोहने सफर च मैं तुहाड़ी दोस्त शुभता रवांगी जी तुहाड़े नाल। दोस्तों, सवेर का वेला शायद दिन का सब तो सच्चा वेला हुंदा है। ना दिन की भज दौड़ शुरू हुई हुंदी है हले इस वेले, तो ना ही शाम की थकावट हुंदी है। बस एक नवा पन्ना हुंदा है ते उस ते लिखन लई पूरा दिन। रब अज का दिन साढ़े हाथ च रख दिंदा है। हुण ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾਹਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1 ਘੰਟਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ 'ਚ ਇਸ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ।

सोनू निगम स्वनाद तेशान दी आवाज़ से तुसी फिल्म थ्री इडियट्स दा इस सोहना जो गीत सुन रहे से बहुत पॉजिटिविटी भरी सी दोस्तों इस गीत च क्योंकि अक्सर जदों मन च बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं ना उदों एक बार अपने आप नूं यह कहना है कि ऑल इज़ वैल सब कुछ ठीक है ना केवल अपने आप नूं सगों जेकर तुसी दूजे नूं भी परेशानी च देखदे हो बस उन्हों भी यही कहो कि सब कुछ ठीक है तो रब की मेहर है सब कुछ ठीक ही होवेगा। हुण दोस्तों प्रोग्राम सोहनी सवेर च ए तुसी गीत इंजॉय कीता ते हुण वेला है जी प्रोग्राम च अज दे शुभ विचार दा। दोस्तों सियाणी अक्सर कहंदे ने कि जिहड़ा बीज असी बीजते हाँ कल फल भी उस दा मिलदा है ते जो भी असी अज करांगे कल उहदे नतीजे साडे सामने होणगे ते क्यों ना चंगे ही काम कीते जाण। कहंदे ने रीज करो या खीज फल जिहड़ा ना ओ मिलना है ते क्यों ना चंगे काम करके चंगा फल लईए। हुण भावें गल साडे बोलां दी होवे साडे कर्मां दी होवे या साडी सोच दी जिंदगी जिहड़ी है ना ओ हमेशा ओही वापस करदी है दोस्तो जो असी इसनू दिन्ने आ। जे असी किसे दे चेहरे ते मुस्कुराहट लियाउने आ लियाउण दी कोशिश करदे आ ते किसे दी मदद असी जे करिए किसे लई चंगा सोचिए तां फिर जिहड़ी चंगियाई है ना ओ किसे ना किसे रूप च दोस्तो मुड़ के साडे कोल जरूर आउंदी है। इसे लई फल दी चिंता करन तों पहलां अपनी कर्मां नूं सोहणा बनाईए क्योंकि जदों बीज चंगा होवे ना ते फल भी फिर मिठा ही हुंदा है। ते लो जी इसे सोहनी सोच दे नाल असी कोशिश करनी है कि असी किसे दे काम आईए किसे दी मदद करिए क्योंकि दिलां च दोस्तों रब वसदा है। गुरदास मान दी आवाज़ ते मास्टर सलीम दी आवाज़ च तुसी भी सुनो ये गीत कुछ अजिहा ही सुनेहा ए भी दे रहे हैं।

बिल्कुल जी, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बढ़ाना। जड़ा अज दा दिन है ना, ओ बेशक संवाद ते गल कर रहे, लेकिन जदों संवाद होवेगा, एक दूजे नाल मिलांगे, एक दूजे नूं समझांगे, एक दूजे दी मदद करांगे, तां ही मिलके अग्गे वधांगे। आशा रफ़ी ते चौरस दी आवाज़ से तुसी इंजॉय कर रहे सी जे गीत ते प्रोग्राम चल रहा है। सोहनी सवेर ते दोस्तों, हुण इस प्रोग्राम च असी गल करांगे IMD वालों जिहड़ी जानकारी दित्ती गई है, यानी कि मौसम संबंधी। मौसम जिहड़ा है दोस्तों, गर्मी ने इस वेले काफ़ी ज़्यादा जिहड़ा असी कह सकदे हां लोकां दा हाल बेहाल कीता होया है। बहुत ज़्यादा गर्मी है। तापमान दी जेकर असी गल करिए, 44-45 डिग्री तापमान जिहड़ा है ओह होया पिया है, ते उहदे करके किते ना किते हीट वेव दा अलर्ट जिहड़ा ओह पंजाब ते चंडीगढ़ दे विच मौसम विभाग वल्लों येलो अलर्ट जारी कीता गया है। ते राहत दी जिहड़ी खबर किते ना किते IMD वल्लों दित्ती जा रही है कि 11 जून तो, यानी कि कल तो, मौसम जिहड़ा ओह बदलेगा, करवट लएगा, ते बारिश दी संभावना, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिहड़ियां ने ओह एक्टिव हुंदियां दिखाई दे रहियां ने, ते उहदे करके जिहड़ा ओह एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो हिट हुंदियां ने, ते बारिश की संभावना बनी हुई है। लेकिन पंजाब ते चंडीगढ़ की जेकर असी इस वेले गल करिए, ते अज मौसम विज्ञान केंद्र वालों चंडीगढ़ ते पंजाब दे 9 जिलों च हीट वेव का जिहड़ा अलर्ट है दोस्तों वह जारी किया गया है, जिदे च मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि राजस्थान के नाल जिहड़े सटे इलाके ने, जिदे च फिरोजपुर है, फाजिलका है, फरीदकोट है, मोगा, बठिंडा, बरनाला, मानसा, ऐ कुछ जिले ने जिथे हीट वेव जिहड़ी है ਉਹ ਚੱਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਟ ਵੇਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਰਟ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਵੇਵ ਦਾ ਅਲਰਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣੀ ਸਵੀਟ 'ਚ ਅੱਗੇ, ਹਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੈ, 12 ਮਹੀਨੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਨਿਹਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਸਮ ਵੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਰ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਿਤਾਉਣਾ। ਕੁਛ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਅਗਲਾ ਗੀਤ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ 'ਚ, ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਗੀਤ।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ थी। ये आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। दोस्तों अजकल असी हुनी जिवें गल कर रहे सी कि IMD वल्लों हीट वेव दा अलर्ट जारी किया गया है, तो अजकल जेकर असी दोपहर वेले जेकर असी 10-11 या फिर 12 बजे तक की गल करिए, 10 बजे तुसी लगा के चलो कि असी बाहर निकलते हाँ तो जिहड़ी धुप है वह अपना पूरा असर दिखा रही होंदी है। तो जो असी बाहर कितने जा रहे होंगे या फिर ट्रैफिक लाइट्स से तुसी या इस तो इलावा कितने होर असी मेन सड़क की गल करिए, साड़ी कोशिश रहती है कि असी छावें खड़े हो जाइए। गर्मी लगातार वध रही है तो कई थावां ते जिहड़ा तापमान है वह भी काफ़ी ज़्यादा दर्ज किया जा रहा है। तो इस वेले अक्सर असी जिवें मैं पहला कहा कि एक गल सानू याद आती है कि जे साडे किते आले दुआले होर रुख हुंदे, होर हरियाली हुंदी, तो शायद यह जिहड़ी गर्मी है ना यह भी घट महसूस होंगी। क्योंकि दोस्तों इस वेले जिहड़ा इन्नी ज़्यादा गर्मी हो रही है, जिहड़ा इन्ना ज़्यादा तापमान वध रहा है, 45-46 डिग्री भी दर्ज किया जा रहा है, उसकी वजह की है? उसकी वजह है जी ग्लोबल वार्मिंग। तो लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही गल सोचते हैं कि होर पेड़ होने चाहिए सी, सिर्फ असं यह गल करते हैं या वीडियोज़ या फिर रील्स के देखते हैं, लेकिन अमल किन्ने लोग करते हैं? दोस्तों भावें विश्व वातावरण दिवस जो इनवायरमेंट डे है वह लंघ चुका है, पर वातावरण की जी संभाल है ना वो सिर्फ एक दिन की जिम्मेवारी नहीं है। अज भी जेकर असी रुख लगाइए, उसकी संभाल करिए, आने वाले सालों च ना सिर्फ सानू छां देगा सगों साफ हवा ते ठंडक भी देगा। साडी जिहड़ी आने वाली जनरेशन है ना वह भी साडा थैंक्स करेगी। कहिंदे ने कि सब तो वधिया जिहड़ा समा है ना रुख लगाउण दा 20 साल पहला सी, ते दूजा जिहड़ा समा है ना दोस्तों की तुसीं जानदे हो किहड़ा है? ओ है जी अज दा समा। इस लई दोस्तों जे मौका मिले तो कोशिश करिए आप भी तो दूजियां नूं भी कहिए कि बरसात दे मौसम जिहड़ा हुण आने वाला ना इस जरूर कोशिश करिए कि आपां बूटे लाइए, पेड़ जिहड़े उगाइए, लोगों नूं प्रेरित करिए, क्योंकि अज लाया जिहड़ा एक पौधा है ना वह कल किसे लई ठंडी छां बन सकदा है। तो असी जे सानूं यह जीवन मिले है तो कोशिश करिए असी दूजियां दे काम भी आईए। वह किवें आवांगे जदों असी अपने आप नूं बिल्कुल सरेंडर कर देवांगे, तो यह कुदरत जिहड़ा इस रब ने सानू इस कुदरत दी दात बख्शी है, बहुत सारिया नहमतां बख्शियां ने जेकर असी इना दी संभाल करांगे। तो प्रोग्राम सोहनी सवेर च इसी तरह गल्लां बातां दा जिहड़ा सफर है वह जारी रहेगा। हुण तुसी सतिंदर सरताज की आवाज़ सुनो यह सोहना जिहा गीत।

लो जी दोस्तों, कड़ी दी सुइयां जिहड़ियां ने ना, प्रोग्राम नू ख़त्म करन ते तुहाड़े तो इजाज़त लैन वाले इशारा कर रही ने। आस करदे आ कि अज दी सोहनी सवेर विच सांझियां कीतियां गल्लां, सोहणे गीत अते प्यार प्यारे जिहड़े विचार ने, उह तुहाडे दिल तक जरूर पहुंचे होणगे। दोस्तों, जिंदगी हर रोज़ सानू कुछ नवां सिखाती है, कदे मुस्कुरा के, कदे अज मां के। पर जे मन विच विश्वास बनया रवे ते रब दा नाम नाल रहे, ता हर जिहड़ा दिन है ना, वह होर आसान लगन लग पैंदा। जांदे जांदे एक सोहना जिहा ख्याल कि हर दिन नू खास बनाउण लई किसे वड्डी वजह दी लोड़ नहीं हुंदी। एक मुस्कुराहट, एक शुकराना ते एक चंगा विचार ही काफ़ी हुंदा है। इसे दुआ दे नाल ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤ ਸ਼ੁਭਤਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ 'ਚੋਂ। ਇਜਾਜ਼ਤ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ, ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਸੁਣੋ ਇਹ ਗੀਤ।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री के सबसे लंबे कार्यकाल की उपलब्धि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की आज नई दिल्ली में बैठक। केंद्र ने 125,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। विकसित भारत जी राम जी का नया संस्करण 1 जुलाई से होगा लागू। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर जवाबी हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ने दांबुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों

0: भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखबार में एक लेख में गुजरात के वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के उनके सफर और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4,399 दिन पूरे करने का उल्लेख किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनकी 12 वर्षों के सफल शासन के उपलक्ष्य में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज शाम 7 बजे ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील पर एक भव्य महाआरती और 10,000 दीपक जलाने की विशेष व्यवस्था की गई है। इसी के साथ प्रदेश भाजपा द्वारा प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है जिसकी शुरुआत शाम 4:30 बजे स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह के साथ होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आज शाम मंदिर में एक भव्य महाआरती का नेतृत्व करेंगे जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026 जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी समाचार केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत

0: रहा है, आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के अगली पीढ़ी के सुधार अब एक तेज गति वाले सुधार अभियान बन चुके हैं, जिसके केंद्र में युवा शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के

0: गति वाले सुधार अभियान बन चुके हैं, जिसके केंद्र में युवा शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
1: मेन ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है। तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, अब थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
0: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
3: केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 1,25,00,000 रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था, हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया। उधर ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।
4: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशम, जास और कोहे मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक के बामानी जिले में 2 जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा। और
3: क्रिकेट में इंडिया ए ने कल त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल खेला जाएगा 21 जून को। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
5: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों ने सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और पीओके में बढ़ती पाकिस्तान की बर्बरता की खबरों को सुर्खियों से प्रकाशित किया है। लोकसत्य ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र प्रकाशित करते हुए श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने के रिकॉर्ड को रेखांकित किया है। पत्र ने उनके ऐतिहासिक 14 फैसलों को भी क्रमवार सूचीबद्ध किया है। अमर उजाला ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर प्रकाशित करते हुए अपनी खबर को शीर्षक दिया है, मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए दुनिया। पत्र ने ब्रिटेन के 50 सांसदों के उस पत्र का भी उल्लेख किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान

0: Iftar. And with that, it's back to you, Saira.
1: Thanks, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi becomes longest-serving elected Prime Minister of India. World leaders hail Prime Minister Modi's transformative governance and advocacy for Global South. NDA to meet in New Delhi today to celebrate PM Modi's achievements and completion of 12 years of government. Centre unveils 1.25 lakh crore rupees rural development push. New framework under Viksit Bharat Jiramji to roll out from 1st July. US military launches strikes against Iran in response to downing of Army Apache helicopter off Oman coast. And in cricket, Ruthuraj Gaikwad's century helps India A beat Sri Lanka A by 8 runs in tri-series opener in Dambulla. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a great day.
2: नमस्कार ए आकाशवाणी ए खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर पहले इस बुलेटिन दियां खास खबरां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज भारत दे सब तो वध समय तक सेवा निभाउण वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बन गए ने मोदी सरकार दे 12 साल पूरे होण अते प्रधानमंत्री दे सब तो लंबे कार्यकाल दी प्राप्ति दे संबंध विच आज राष्ट्रीय लोकतंत्री गठजोड़ NDA दी नवी दिल्ली च बैठक विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज तो बुल्गारिया ते फिनलैंड दे दो दिन सरकारी दौरे ते केंद्र ने देश विच देहाती विकास लई 1.25 लाख करोड़ रुपए दे प्रोग्राम दा ऐलान कीता ते क्रिकेट विच ऋतुराज गायकवाड़ दे सैकड़े दी बदौलत भारत ने दांबोला च तिकोणी एक दिना अंतरराष्ट्रीय मैच दी लड़ी दे पहले मैच विच श्रीलंका ए नूं 8 दौड़ां नाल हराया हुण खबरां विस्थार नाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज भारत दे सब तो वध समय तक सेवा निभाउण वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बन गए ने श्री मोदी ने 26 मई 2014 नूं अहुदे दी सहुं चुकी सी उन्होंने पंडित जवाहर लाल नेहरू के रिकॉर्ड नूं पिछे छड्ड दित्ता है जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 नूं चुने हुए प्रधानमंत्री वजों सहुं चुकी ते 27 मई 1964 तक सेवा निभाई चुने हुए प्रधानमंत्री वजो पंडित नेहरू का कार्यकाल 4398 दिन का सी 26 मई 2014 तो अज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निरंतर कार्यकाल हूँ 4399 दिन है जिस नाल ओह भारत के इतिहास विच सब तो वध लंबे समय तक सेवा निभाउण वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बन गए ने पेश है एक रिपोर्ट
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राप्ति भारत में शासन के पैमाने अते जटिलता नूं ध्यान विच रखदिआं विशेष तौर पर ध्यान देने योग्य एक अजिहे समय में जदों बहुत सारे देशों ने सियासी उतरा चढ़ाव सरकार विच वार वार बदला अते नीतिगत अनिश्चितता देखी है भारत ने लीडरशिप अते शासन विच निरंतरता दा अनुभव कीता है ए दुनिया दे सब तो वड्डे लोकतंत्र विच लगातार 3 वार राष्ट्रीय जनादेश विच निरंतर जनतक भरोसे नूं दर्शाउंदा है स्वतंत्र आलमी सर्वेखना ने लगातार प्रधानमंत्री मोदी नूं दुनिया दे सब तो प्रसिद्ध लोकतंत्री नेतावां विच दर्जा दित्ता है उन्हां नूं 30 तो वध देशां दे सर्वोच्च नागरिक सम्माना नाल भी सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल दौरान करीब 25 करोड़ भारतीय बहुपक्षी गरीबी तो बाहर निकले और लोगों ने डिजिटल जनतक बुनियादी ढांचे का तेजी नाल पसार वड्डे पद्धर ते बुनियादी ढांचा विकास भलाई डिलीवरी विच सुधार अते व्यापक आधारित समाजिक आर्थिक तरक्की वेखीए इस समय दौरान भारत ने दुनिया की सब तो तेजी नाल वध रही प्रमुख आर्थिकता वजों अपनी स्थिति मजबूत की है वड्डियां आर्थिकतावां नाल अहम व्यापार समझौते किए ने अते विकास तकनोलॉजी जलवायु अते आलमी साउथ दियां तरजीहां समेत विश्व मुद्दियां ते एक वधेरे प्रभावशाली आवाज वजों उभरिया है ब्यूरो रिपोर्ट नाल आकाशवाणी खबरां लई जलंधर तो मैं राजेश बाली
2: विश्व नेतावां ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं भारत दे सब तो लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री बनन ते वधाई दित्ती है विश्व नेतावां ने प्रधानमंत्री दे परिवर्तनशील शासन आलमी दखण लई उन्हां दी वकालत अते एक समावेशी ते आर्थिक तौर ते गतिशील भारत दे उन्हां दे दृष्टिकोण दी शलाघा भी कीती है श्रीलंका दे राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायके ने एक पत्र विच कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दे दृष्टिकोण ने श्रीलंका समेत भारत दीआं सरहदां तों परे बहुत सारे लोकां नूं प्रेरित कीता है पापुआ नू गिनी दे प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक निजी वीडियो संदेश विच प्रधानमंत्री मोदी नू एक आदर्श अते लीडरशिप दी मिसाल दस्या इस तो इलावा त्रिनिदाद ते टोबैगो

0: महाजन, जम्मू तवी, पठानकोट कैंट, जलंधर कैंट, लुधियाना, अंबाला कैंट, सहारनपुर ते रुड़की शामिल ने। मर्दां दे क्रिकेट विच भारतीय ने कल श्रीलंका विच त्रिकोणी एक दिन अंतरराष्ट्रीय मैचा की लड़ी के पहले मैच विच श्रीलंका ए नू 8 दौड़ा नाल हरा दिता है। ऋतुराज गायकवाड़ ने 101 ते कप्तान तिलक वर्मा ने इस मैच विच 60 दौड़ा बनाईया। भारतीय दा अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए नाल होएगा। आखिर च खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज भारत के सब तो वह समय तक सेवा निभाउण वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बन गए ने। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होण अते प्रधानमंत्री दे सब तो लंबे कार्यकाल की प्राप्ति के संबंध में अज राष्ट्रीय लोकतंत्री गठजोड़ NDA की नवी दिल्ली च बैठक। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर अज तो बुलगारिया ते फिनलैंड के 2 दिन सरकारी दौरे ते। ते केंद्र ने देश विच देहाती विकास लई 1.25 लाख करोड़ रुपए के प्रोग्राम का ऐलान किया है। इस दे नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन दोपहर बाद 1:10 ते होएगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 864 किलोहर्ट्स, FM 100.8 मेगाहर्ट्स, FM 100.9 मेगाहर्ट्स अति DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जालंधर केंद्र है। तुसी साडी प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। प्रोग्राम महक पंजाब दी नू थोड़ा जा इंतजार होर।

0: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी ले 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज कराओ।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
3: अजय ही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
4: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। प्रोग्राम महक पंजाबी। पंजाबी फिल्म म्यूजिक दे इस प्रोग्राम च सब तो पहला गीत असी तुहानू सुनान जा रहे हैं फिल्म एक वादा चो अमरिंदर गिल दी आवाज़। तुसी भी इंजॉय करो ये गीत।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਤਰਮਨ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਵੈਲ ਡਨ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਨ ਅਪਰੂਵ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਸਟੂਡੀਓ, ਨਵਾਂ ਕੈਮਰਾ, ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ, ਲੱਗੇ ਹੱਥ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਵੀ ਲੈ ਲੈ ਉਸੇ ਲੋਨ ਨਾਲ। ਨਾ, ਲੋਨ ਲਏ ਗਏ ਕੰਮ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੋ। ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਵਧਾਓ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਲੋਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਹੀ ਲੈ ਲੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ?
2: RBI ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
1: ਵਿੱਤੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਾਰੀ।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ दी ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। प्रोग्राम महक पंजाब दी च आखिरी गीत तुहानू सुनान जा रहे हैं, फिल्म सूफना चो एमी विर्क दी आवाज़। तुसी भी सुनो ए गीत
6: दा सांझा। या रब

हुने तुसी सुन रहे सी प्रोग्राम महक पंजाब दी। साड़ी स्टूडियो दी कड़ी मुताबिक इस वेले सवेर दे 9 बज रहे ने। हुन पेश ने अज दियां मुख खबरां।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, डीआरएम 864 किलोहर्ट्स, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्स, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स अते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। हुण पेश करन जा रहे हैं आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम विभाग अते खेतरी समाचार इकाई दी सांझी पेशकश, विचार चर्चा मिशन लाइफ। इस भाग लैण वाले ने श्रीमती सविता सिंह, इंजीनियर लुपिंदर कुमार ते संचालक राजेश चंद्र बाली। आओ सुनदे हां एक खास पेशकश।

0: ये कि हम सारी बैटरीज अपनी डेड बैटरीज को इकट्ठा करते रहें, और जब कभी भी हमारा उस पर्टिकुलर एरिया में चक्कर लगता है तो सर हमें वहीं पे डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। साथ ही साथ आजकल इनबिल्ट बैटरीज आ रही है मोबाइल्स में, हम अपने मोबाइल्स को अपग्रेड करते हैं लेकिन पुराना मोबाइल हम अपने घर में रख लेते हैं, तो उसके लिए भी हम कर सकते हैं कि या तो हम पुराना मोबाइल एक्सचेंज में दे दें या फिर पुराना मोबाइल को डोनेट कर दें। उसमें क्या होगा कि जो आपका बैटरी का है लाइफ वो हमारा फर्दर रीयूज हो जाएगा। अगर हम डोनेट करते हैं तो कोई और उसे रीयूज करेगा, अगर हम उसे एक्सचेंज करते हैं तो कंपनी उसकी हर एक ई वेस्ट को प्रॉपरली मैनेज करेगी, यूज रीयूज करेगी और हमें एक नया प्रोडक्ट कम एक्सपेंसेस पे मिलेगा जो कि एनवायरनमेंट को कम डैमेज करेगा। इसके साथ ही साथ सर मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा था कि पवन जो है हमारी गुरु है, पानी हमारी पिता है, सर ऐसे में जब कभी भी हम पानी की बात करते हैं, पीने की पानी की बात करते हैं, तो अगर एक जलंधर की पॉपुलेशन सर लगभग 22 लाख है, अगर 22 लाख पॉपुलेशन में से सिर्फ 1000 लोग भी ये फॉलो करें कि जब भी वो घर से बाहर निकलें तो वो अपनी स्टील बॉटल या फिर जो भी बॉटल वो यूज कर सकते हैं या जो अफोर्ड कर सकते हैं उस बॉटल को यूज करते हुए घर से पानी लेके जाते हैं, तो उन्हें मार्केट से पानी खरीदने का सर बचाव होगा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर 1000 लोग भी सिर्फ ये फॉलो करते हैं, 1000 फैमिलीज ये फॉलो करती हैं जिसमें लगभग 4 सदस्यों की फैमिली है, चारों बाहर जा रहे हैं, हर रोज वो अपना पानी घर से लेके जाते हैं और बाहर से वाटर बॉटल नहीं खरीदते हैं, तो सर एक साल में हम लगभग 14,60,000 पानी की प्लास्टिक बॉटल्स के यूज से बच जाएंगे सर, जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट में हम कंट्रीब्यूट करेंगे कि हम एक्स्ट्रा प्लास्टिक जबरदस्ती उसमें नहीं डाल रहे हैं। उसी तरह से हम कुछ और छोटी छोटी सी चीजें रख सकते हैं, जैसे कि अपने पर्स में एक छोटा सा, लुपिंदर जी ने अभी कहा था कि सिंगल यूज प्लास्टिक सबसे ज्यादा डेंजरस है एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि जब वो हीट होती है तो वो उसके माइक्रो प्लास्टिक पार्टिकल्स हमारे एनवायरनमेंट में, सॉइल में, वाटर में, हर जगह मिक्सड अप होते हैं। ऐसे में अगर हम एक कपड़े का बना थैला अपने पर्स में, अपने स्कूटर में, अपनी कार में रख लेते हैं तो हम सिंगल यूज प्लास्टिक से काफी हद तक बच सकते हैं। आप देखेंगे कि जब कभी आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो लगभग 20 से 25 थैले आप प्लास्टिक के ले लेते हैं, लेकिन अगर आपके पास वहीं एक कपड़े का थैला होगा तो डेफिनेटली आप वो 20-25 प्लास्टिक की थैलियां एनवायरमेंट में भेजने से बचोगे। तो ये एक छोटी छोटी सी ट्रिक है जैसे कि हम पानी बचा सकते हैं। उसी तरह से सर जो घर में यूज होता है सर्फ, तो सर्फ सबसे ज्यादा पानी को पोल्यूट करता है। आजकल सभी घरों में लगभग या तो फुली ऑटोमेटिक मशीन है या सेमी ऑटोमेटिक मशीन है जिसमें सर्फ फिर भी रीयूज होता है, बट फुली ऑटोमेटिक मशीन की अगर हम बात करें तो उसमें वन गो में ही सर पूरा सर्फेक्टेंट जितना भी है हमारा नालियों में चला जाता है, तो वो पानी को पोल्यूट करता है। ऐसे में हम गर्मियों के सीजन में स्पेशली सर कर सकते हैं कि जो हल्के कपड़े हैं या फिर जो जल्दी सूखने वाले कपड़े उन्हें हाथ से धुले और उसमें कम पानी का इस्तेमाल होगा, कम सर्फ का इस्तेमाल होगा और हमारी हेल्थ भी बनेगी क्योंकि हम एक्टिव रहेंगे और हम अपने एनवायरनमेंट को भी बचा पाएंगे।
1: बहुत अच्छी गल तुसी दसी है, पर दिक्कत अजकल दे जमाने विच की है कि लाइफस्टाइल इतना ज्यादा फास्ट हो गया है, जिंदगी इतनी तेजी नाल चलन लग पई है सारयां लई कि हर कोई चाहंदा कि मैनू सब कुछ चीजां जिहड़ियां मेरे काम करन वालियां मिंटा सकिंटा विच हो जान। तुसी बहुत चंगी गल दसी है कि सर्फ दा जिन्ना इस्तेमाल असी करदे हैगे आ और जिन्ना ओ पानी नू पोल्यूट करदा है, ये वाकई चिंता दी गल हैगी है। फिर भी जो जिहड़े घरां दे विच सारे ही वर्किंग हैगे ने और ओ जदों घरों बाहर जांदे ने ओ मशीन नू ऑटोमेटिक लगा के चले जाते हैं, उन्होंने वास्ते ये दिक्कत जरूर ने कि किस तरह इस नु कटान, पर एदा मतलब ये नहीं होंदा दोस्तों कि असी कोई चीज कर नहीं सकते। असी अगर चीज नु अपनावांगे भावें हौली हौली अपनाइए, कोशिश करिए कि इन्हों चीजा नु असी इस्तेमाल घट करिए जिहड़ियां पानी नु पोल्यूट करदियां ने, पानी नु खराब करदियां ने, साडी धरती दे विच पोल्यूशन करदियां ने, हौली हौली हर चीज संभव हो जाती होंगी है। एदे च मैं तुहानूं एक चीज होर भी दसना चाहवांगा दोस्तों कि जिहड़ा ये मिशन लाइफ हैगा है, ये भारत की गवाही वाली विश्वव्यापी जन अंदोलन हैगा जिन्हों साडे प्रधानमंत्री ने 1 नवंबर 2021 नूं ग्लासगो विच एक COP26 यानी COP26 सम्मेलन होया सीगा, उदे विच उन्होंने इस बारे सारे विश्व नूं जानकारी दित्ती सी और इसका उद्देश्य यही सीगा कि जिहड़े आम लोग हैगे ने, भाईचारे हैगे ने, वो एक अजिही जीवन शैली का अभ्यास करन और जिस नाल की वो कुदरत दे नाल समकाली होवे अते इस नूं नुकसान ना पहुंचाया जाए, मतलब कुदरत नूं नुकसान पहुंचाए बिना असीं अपनी जीवन शैली नूं अगे वधाईए, जिस तरह असीं पहलां वी साडा सारा विश्व जिहड़ा सीगा, साडा हिंदुस्तान जिहड़ा हैगा, असीं पहलां वी करदे रहे हां। इहदे जरूर ये चीज़ मन में आती कि उस वेले जनसंख्या बहुत घट सीगी, हुण जनसंख्या बहुत वध गई है,

वाह, कितनी खूबसूरती नाल इस गज़ल ने सानू ए एहसास करवाया है कि जदों इंसान दा दिल सच्चाई अते मुहब्बत नाल भर जावे तां हर गल विच रब दा नूर नज़र आउण लग पैंदा है। ते इसे रूहानी एहसास तो बाद आओ सुनदे हां एक होर खूबसूरत गज़ल।

0: हुने तुसे सुन रहे से गजलां मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। हुन पेश ने आज दिया मुख खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज भारत दे सब तो वध समय तक सेवा निभाउण वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बन गए ने। श्री मोदी ने 26 मई 2014 नूं अहुदे दी सहुं चुकी सी। मोदी सरकार दे 12 साल पूरे होण अते प्रधानमंत्री दे सब तो लंबे कार्यकाल की प्राप्ति दे संबंध च अज राष्ट्रीय लोकतंत्री गठजोड़ NDA दी नवी दिल्ली च बैठक। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर तो बुल्गेरिया अते फिनलैंड दे 2 दिना सरकारी दौरे ते होंगे। केंद्र ने देश विच देहाती विकास ले 1.25 लाख करोड़ रुपए दे प्रोग्राम दा ऐलान कीता है। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 31 स्टार्टअप्स अते उना दे संस्थापकां नूं 1 करोड़ रुपए तो वध दी सीड ग्रांट वंडी। पंजाब विच झोने दी लुआई लई तीजा पड़ाव कल तो आरंभ हो गया है। पंजाब दे ट्रांसपोर्ट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जलंधर ते लुधियाणा तो दिल्ली दे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक चलण वालियां 5 नवियां सुपर इंटीग्रल वॉल्वो कोच बसां नूं हरी झंडी दिखा के रवाना किया। अमृतसर देहाती पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियां नाल सांझी कार्रवाई दौरान सरहद पार बैठे संचालकां नाल जुड़े 2 व्यक्तियां नूं गिरफ्तार किया ते 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए। पंजवें पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी दे शहीदी पुरब मौके पाकिस्तान स्थित इतिहासक गुरुधामां दे दर्शन करन लई अज 541 श्रद्धालुआं दा जत्था श्रोमणी कमेटी दे मुख दफ्तर तो पाकिस्तान लई रवाना होवेगा। क्रिकेट विच ऋतुराज गायकवाड़ दे सैकड़े दी बदौलत भारत ए ने दांबोला च तिकौणी 1 दिना अंतरराष्ट्रीय मैच दी लड़ी च पहले मैच विच श्रीलंका ए नूं 8 दौड़ा नाल हराया है। एसन अज दियां मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 864 किलोहर्ट्स, FM 100.8 मेगाहर्ट्स, FM 100.9 मेगाहर्ट्स आदि DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। इस वेले साडे स्टूडियो दी घड़ी मुताबिक सवेर दे 10:03 हो रहे हैं ते हुण वेला हो चुके है जी तुहाडी मन पसंदीदा प्रोग्राम हैलो फरमाइश दा। लाइव फोन इन इस प्रोग्राम च तुसी शिरकत कर सकते हो ते अपने मन पसंदीदा गीत सुन सकते हो। शिरकत करन लई तुसी नंबर डायल करो जी। नंबर है 0181 3242 173। ए नंबर डायल करो, प्रोग्राम च करो शिरकत ते सुनो अपने मन पसंदीदा गीत। प्रोग्राम दी आगाज करदे आ फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हनिया चो राहत फतेह अली खान दी आवाज च गाए इस गीत दे नाल।
1: अक्कां की फरमाइश बिल्लू मुन्नी और शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से। संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के। पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना, कैसा ये इश्क है

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्था

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। प्रोग्राम चल रहे दोस्तों, हलो फरमाइश ते आओ जानते हैं इस प्रोग्राम च सब तो पहली फरमाइश केड़े कॉलर दोस्त लेके आए ने। हलो,
2: प्यार ते सतिकार भरी सत श्री अकाल जी।
1: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे ने?
2: सोम दत्त बोलदा जी, मैं सगेट नाभे तो जी।
1: बहुत बहुत स्वागत है जी साडा इस तुहाडा इस प्रोग्राम च।
2: पूरी
1: करदे आं तुहाडी फरमाइश, मोहम्मद रफी दा गाया गीत।
2: बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद जी। हीर रांझा फिल्म चो मोहम्मद रफी दा गाया गीत, तुसे भी करो इंजॉय ते अपनी फरमाइश सानू दसो। उदे लिए तुसी नंबर डायल करो 0181-243-173। नंबर डायल करो, प्रोग्राम च शिरकत करो ते सुनो अपने मन पसंदीदा गीत।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: सत श्री अकाल पंजाबियो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वालों सहभागी न्याय ते कार-कार न्याय लई एक इतिहासिक पहल कीती गई है, जिथे मिलेगा तुहाडे केस नूं तुरंत सम्मानजनक हल। हिस्सा बनो समाधान समारोह 2026 दा 21-22 ते 23 अगस्त नूं सुप्रीम कोर्ट विच विशेष लोक अदालत लग रही है।
2: पर की उस दे लई मैनूं दिल्ली जाना पएगा?
1: जरूरी नहीं, तुसीं ऑनलाइन भी जुड़ सकते हो।
2: अप्लाई किवें करिए?
1: सुप्रीम कोर्ट दी वैबसाइट www.sci.gov.in ते गूगल फॉर्म राही बेनती भेजो। याद रखो, आखिरी तारीख 31 मई 2026 है। सहायता लई 011-2311-2428 ते संपर्क करो।
2: समाधान समारोह 2026 आपसी सहमत ते पक्का निपटारा।
0: सरकार दे माण मत्ते 12 साल पूरे होने ते आकाशवाणी दा समाचार सेवा विभाग 1 जून तो प्रसारित कर रहा है 21 लड़ियां दा एक विशेष प्रोग्राम। 35 मिनट दे इस प्रोग्राम दा प्रसारण हुंदा है रोजाना शाम 7:10 तो लेके 7:45 तक। इसलिए शाम 7:30 प्रसारित होने वाली पंजाबी खबरों का प्रसारण रोज शाम 7 किया जा रहा है। सरकार दे माण मत्ते 12 सालों की कामयाबी की कहानी आकाशवाणी दे समाचार सेवा विभाग की जुबानी।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। प्रोग्राम चल रहे जी हैलो फरमाइश ते आओ जानते हैं फिर अगली फरमाइश केड़े कॉलर दोस लेके आए ने। हैलो
4: हैलो नमस्कार मैडम।
3: नमस्कार जी, कौन बोल रहे ने?
4: संजीव कुमार बोल रहा हूं, मैं स्टैंड से बोल रहा हूं, तस्वीर में पे रही
3: हूं। बहुत-बहुत स्वागत है जी, की हाल चाल है? शिरकत की थी ये थे।

0: काम अजमल का।
1: हाँ जी
0: दीद है, क्या करते थे साजना तुम समझते हो?
1: ठीक है जी, जरूर कर दें असी तुहाड़ी फरमाइश पूरी। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करन लई।
0: शुक्रिया मैडम, शुक्रिया,
1: धन्यवाद जी। लाल दुपट्टा मलमल का सन 1988 च यह फिल्म आई सी, ते इस दे विचों जिहड़ी इहनां दी फरमाइश है, वह गीत दे जिहड़ा गाया है वह आवाज़ दित्ती है उदित नारायण ते अनुराधा पोदवाल ने। लो जी तुसीं भी इंजॉय करो इहनां दी फरमाइश दा गीत, ते हाँ जी अपनी फरमाइश भी तुसीं दस सकते हो। उहदे लिए प्रोग्राम च शिरकत करनी पएगी। प्रोग्राम च शिरकत किवें करनी है? नंबर डायल करके, नंबर है 0181 2342173। प्रोग्राम हैलो फरमाइश, इंजॉय करो ये गीत।

0: आवाज़ तो तुसी सुन रहे सी जे बहुत सोहना जो गीत ते प्रोग्राम हलो फरमाइश आओ जानते हाँ हुन अगली फरमाइश कौन लेके आए ने। हलो
1: सत श्रीकाल भैन जी।
0: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे ने?
1: मैं बलवीर सिंह जी, पिंड करनी खेड़ा, जिला फाजिलगा जी।
0: बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा। किन्नी देर बाद कॉल लग गया ते तुहाडा की हाल चाल है?
1: जी साल हो गया पूरा जी।
0: लो जी साल हो गया ते अज ते फिर बहुत खुश हो गए साल बाद तुहाडी कॉल लगी है।
1: वो फोन रोज बुलाना पे मिलता नहीं, ये साल हो गया पूरा।
0: चलो अज फिर तुहाडे आ वधिया दिन बीतेगा क्योंकि तुहाडे अज फिर कॉल लग गई है।
1: हाँ जी
0: खुश हो तुसी?
1: हाँ जी,
0: खुश होवोगे तुसी?
1: हाँ खुश है क्या सुधा
0: हाँ जी, फिर आज केड़ा गीत
1: जी।
0: सुनोगे? अपनी फरमाइश दसो।
1: रोटी फिल्म सुना दे जी,
0: रोटी फिल्म चो केड़ा गीत है जी?
1: बुरे अंदाज इतना गमान ना कर।
0: ठीक है जी, जरूर कर दें तो हड्डी फरमाइश पूरी। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने लई,
1: शुक्रिया जी।
0: धन्यवाद। रोटी फिल्म सन 1974 च फिल्म आई और इस फिल्म चो इन्हों की फरमाइश का जोड़ा गीत है उसनों गाया है लता मंगेशकर ते किशोर कुमार ने। लो जी सुनो तुसी भी सुना जाए गीत।

नाम फिल्म दा गीत तुसी सुन रहे से ही प्रोग्राम हैलो फरमाइश आओ जानदे आ हुण अगली फरमाइश केड़े कॉलर दोस्त लेके आए ने। हैलो हैलो हैलो हैलो हैलो हैलो हैलो शायद एक बार फिर तो कुछ टेक्निकल एरर जिहड़ा है वो आ गया जिसते करके कॉल नहीं लग रही है। असीं कोशिश कर रहे हैं। हैलो हैलो हैलो हैलो हैलो शायद कुछ टेक्निकल एरर है जिस वजह नाल कॉल नहीं लग पा रही है, लेकिन प्रोग्राम च तुसी शिरकत करो उहदे लई नंबर डायल करो 0181 2342 173। और इस दे नाल ही इस प्रोग्राम च अगला गीत जंजीर फिल्म चों वजी ते पलक मुझल दी आवाज़ तुसी भी इंजॉय करो।

0: हुने तुसी सुन रहे सी प्रोग्राम हलो फरमाइश। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। हुन तुसी साडे दिल्ली केंद्र तो सुनोगे हिंदी च समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। श्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी शासन, विकासशील देशों के प्रति उनके प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टि कोण पर चर्चा होगी। केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 1,25,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉ जयशंकर 14वीं कुलतारांता वार्ता में भाग लेंगे। इस वार्ता का विषय है परिवर्तनशील दुनिया, वैश्विक क्षेत्रीय स्थानीय परिप्रेक्ष्य। डॉ जयशंकर फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। ओमान तट के पास अमेरिकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर गिराए जाने के विरोध में अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमले किए हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था और दोनों पायलटों को बचा लिया गया था। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के शहरों सिरिक, मिनाब, बंदर अब्बास और केशम द्वीप पर धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी जो होर्मुज जल डमरू मध्य से सटे हुए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान द्वारा अमरीकी हेलीकॉप्टर को गिराए जाने पर अमरीका की प्रतिक्रिया बहुत मजबूत और शक्तिशाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जन सेवा ही सुशासन का सच्चा मापदंड है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि केवल वही व्यक्ति जनता का विश्वास अर्जित कर सकता है जो विनम्रता, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा के साथ निरंतर कार्य करता रहता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। आओ हुन सुनदे हां प्रोग्राम तमक जलंधर पेंदी।

कस्बा सैंथल, ज़िला बरेली, तो फरियाद हुसैन अंसारी, ताहिर हुसैन अंसारी, तासिफ हुसैन अंसारी, मोहम्मद अजहान अंसारी, अलमीर बशर अंसारी। अगला मैसेज है बीड शहर महाराष्ट्र, तो नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महेत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, राम निवास अग्रवाल, धनंजय टवून, पीबी कुलथे। अगले साथी ने नेड़े हवाई पट्टी पिंड लालगढ़ जट्टा तो श्री गंगानगर राजस्थान तो रणजीत सिंह, रणजीत कौर, गुरप्रीत, मनप्रीत, सुखजीत कौर, समरीत, गुरशरण सिंह, तलवंडी मलिया तो जिला मोगा तो गोपाल कृष्ण शर्मा, निम्रता देवी शर्मा, दुर्लभ कौर शर्मा, चंद्र जोत शर्मा। अगले साथी ने जी श्री गंगानगर तो जगमोहन सिंह, अरनेजा, बजरंग शर्मा, सोनू, मिंटू, करण, हरगुन, पहाड़गंज मुल्तानी टांडा तो अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक अते मधु नायक, शमसुल कमर राही, शाहीन, फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी अते कलीम अंसारी लिखते ने गंज डुडवारा तो ही। ते अगले साथी ने परमजीत पूरबा कक्कड़वाल पुल पूरी धूरी तो, बिंदर खेड़ी करमजीत बमाल, मिंटू सप्पल, अमरीक जलान अते रमन प्रिंस। जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा तो लिखते ने विनय मोहन खारवन, मीनाक्षी प्लोमा अते डॉक्टर ईशानी। अगले साथी ने कुलवंत कुमार, सुनीता, फलक, कशिश ये लिख देने जी पिंड बनवाला हनवंता फाजिलका तो। अगले साथी ने मेन बाजार गुनियाना मंडी तो जोगिंदर सिंह पिंड सीविया तो, सुरजीत सिंह पिंड ख्याली वाला तो, ते कलविनस सिंह मलोड तो, दुर्गा कलोनी हांसी तो लिख देने राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, डब्बू अते बब्बू। गांव हाड़ीखेड़ा जिला सिरसा हरियाणा तो राधे श्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा अते सार्थक शर्मा। पिंड ते डाकखाना खुईया सरवर तो रमेश बिल्ला चावला, हेजल रायजल, विहान चावला, आस्था, जयश्री, संतोष, हेमंत, दीपक, रमेश, रिज्जू, बब्बू, विहू चावला। पिंड खाने की टाब मलोड़ तो लिख देने शमशेर सिंह कौलदर, जसविंदर कौर, मनरीत कौर, करण प्रताप सिंह, तरनवीर अते मनताज। अगले साथी ने जी विनोदपुरी, वीपी राजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, नीलमपुरी, रमा पाली, सुनील पाठक अते विनोदपुरी मोहल्ला, फतेहगढ़ लुधियाना तो। अगला मैसेज है जी बंसीलाल संधुदा पिंड तेजा मोदी तो, मेन बाजार हठूर तहसील जगराओं जिला लुधियाना तो इकबाल सिंह हठूर। ते अगले साथी ने गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियस थांदी, भामिका अते वाणी। ये मैसेज है जी पिंड ते डाक खाना टोरोवाल तहसील बलाचौर जिला नवांशहर तो। आओ फिर इन्हां सब दी रली मिली पसंद दा प्रोग्राम दा अगला गीत सुनदे आ नछत्तर गिल दी आवाज़ विच।

0: प्रोग्राम चल रहा है जी, धमक जलंधर पैंदी ते वापस। प्रोग्राम चल रहा है जी, धमक जलंधर पैंदी वापस आने हैं एक छोटे जे अंतराल तो बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन, ये परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकते हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच। परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।
0: देखते हैं जी प्रोग्राम धमक जलंधर पेंडी विच अगले मैसेज किस किस ने भेजे ने जी। अगला मैसेज आया है MLB रोड ग्वालियर तो सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव, मेघा, साक्षी, आशीष, अनुज, विशु, छोटू अते SK पप्पी खुराना दा। अगले साथी ने जी सहावर रोड गंज रुडवारा तो मुहम्मद उस्मान अंसारी, मुहम्मद कलीम अंसारी अते शामसूल कमर राही। अगले साथी ने एम असलम सैफी, जैबुनीशा बेगम, सद्दाफ सैफी, सोनी सैफी, जाहिर सैफी अते आबाद खान।

अमन वर्मा, रमन वर्मा, देवांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल, कृति वर्मा, सिद्धार्थ वर्मा। ये लिख देने जी हनुमानगढ़ जिला फाजिलका। तो आओ फिर इन्हां सब दी रली मिली पसंद दा प्रोग्राम दा अगला गीत सुनदे आ गुरदास मान दी आवाज़ विच।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम। लड़ीवार नाटक होया।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, DRM 864 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, FM 100.8 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ, FM 100.9 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ ਅਤੇ FM 103.6 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਲਵਲੀਨ ਨਿਗਮ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता

0: का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्यता और दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइप वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति बढ़ा रही है। श्री पुरी ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री पुरी ने कहा कि सरकार ऐसी गतिविधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई कर रही है। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन झूठी खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोट को बंद करके उनकी जगह प्लास्टिक नोट का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में डॉ जयशंकर फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुदेंद्र टंडन ने कल मनीला में आयोजित आसियान क्षेत्रीय मंच के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान श्री टंडन ने समकालीन भू राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में एआरएफ की महत्वपूर्ण भूमिका और संवाद तथा कूटनीति के प्रति समर्थन व्यक्त किया। इस दौरान क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहित हिंद प्रशांत क्षेत्र में वैश्विक संसाधनों के लिए नियम आधारित व्यवस्था बनाए रखने पर विचार विमर्श हुआ। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने का अनुमान लगाया है। कोंकण, गोवा और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में दिन में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। आओ हुन सुनदे आ प्रोग्राम वसदे वेड़े।

0: जी
1: जी हाँ, इकोनॉमी ते ग्लोबल प्रेशर है, मैं मानता, जिवें कि ऑयल प्राइसिस दा, ग्लोबल दी रिसेशन दे, एक साइलेंट वार चल रही है उन्दे ते, डॉलर दी मजबूती बनाए रखना, इन्फ्लेशन नूं घटा के रखना, इकोनॉमी ते प्रेशर जरूर है, पर नाल ही भारत अपने आप नूं मजबूत बनाउण दी कोशिश भी बहुत कर रहा है। जे आत्मनिर्भरता सही तरीके नाल लागू हो जाती है तो आने वाले समय में आप देखांगे कि जॉब्स बहुत ज़्यादा वध रही हैं, रोज़गार वध रहा है, रुपया मजबूत हो रहा है, महंगाई घट रही है, इंपोर्ट घट तो हो रहे हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा तो ज़्यादा हो रहा है, तो इंडिया एक मजबूत इकोनमी बन के सारे देशों तो अगे निकल रहा है। पर यह भी जरूरी है कि आम आदमी की परचेजिंग पावर और राहत का भी ध्यान रखा जाए। तो पद्धे तौर पर जो मैं कह, क्योंकि किसी भी देश की असली ताकत उसकी जनता होंगी है, तो जनता उनकी आवाज़ नूं अपना उठाने का हक है, तो जनता का सरकार के निर्देशों पालन करने का भी हक है, दोनों पक्ष सही ने।
0: बहुत वधिया तुसीं गल कीती है कि असीं सरकार दे पक्ष नूं तां समझना ही है, पर नाल ही जेकर किसी नागरिक की आवाज़ नूं भी समझिया जाए तो वह भी पूरा सहयोग दे सकता है। अज तुसीं बहुत ही विस्तार सहित सारे ही पॉइंट्स से वख-वख पहलुआं से समझाया है कि क्यों सानूं सरकार का आर्थिक पक्षों सहयोग करना चाहिए ते सानू किसी भी सरकार दा प्रशासन दा जो भी हदायतां ने उन्हां दी पालना करनी चाहीदी है तां कि असीं मिलजुल के किसी भी आर्थिक दबाव दा सामना कर सकीए ते आर्थिक तौर ते मजबूत हो सकीए। गौरव छाबड़ा जी बहुत बहुत शुक्रिया तुसीं प्रोग्राम च आए, इसे बारे गलबात कीती, धन्यवाद जी।
1: थैंक यू
2: जी। आपां सुन रहे सी प्रोग्राम सांझ, सांझ दे अंतर्गत आत्मनिर्भर सोच, अर्थव्यवस्था ते आर्थिक दबाव, इन्हां बारे जानकारी दे रहे सन डॉक्टर सीए गौरव छाबड़ा जी, ते इन्हां नाल गलबात कर रहे सन पूनम।
3: और बहुत ही वधिया जानकारी गौरव जी ने दित्ती कि किस तरह आत्मनिर्भर होने के बहुत सारे पक्ष उन्होंने साढ़े नाल सांझे किए, और वाकई जी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था नूं मजबूत बनाने दे विच सरकार ते आम आदमी का सहयोग होना बहुत जरूरी है, और नौजवानों की एक अलका जी बहुत वड्डी भूमिका हो सकती है।
2: बिल्कुल जी, जे असीं थोड़ी जी सहनशीलता ते सरकार दे सहयोग नाल चलिए ते असीं अपनी आने वाली पीढ़ी नूं बहुत ही वधिया भारत दे सकदे हां। जे असीं अज अपनी अर्थव्यवस्था नूं मजबूत बनावांगे तां कल अपने बच्चों नूं सिर्फ धन ही नहीं सगों सुरक्षित सिक्ख्या युक्त ते खुशहाल भविख भी दे सकांगे।
3: और बिल्कुल जी, नौजवानों का सही दिशा च जाना भी बहुत जरूरी है। और अलका जी एक इन्हां किन्नी वधिया जानकारी सी, इस तो बाद एक होर जानकारी जिहड़ी असीं अपने स्रोतियां नाल जरूर सांझी करांगे कि इस वेले नशा मुक्त भारत मुहिम जिहड़ी है वह चल रही है, नौजवानों च जागरूकता पैदा करना, नशा पीड़ितों का मुड़ वसेवा मुख्य धारा दे विच उन्हां नूं लै के आना, और उन्हां दी काउंसलिंग करनी, और नाल दे नाल नशा मुक्त केंद्रां राही उन्हां दा इलाज किया जाए, ये सारियां सेवावां प्रदान कीतियां जाणगियां, और बहुत ही वधिया उपराला है।
2: बिल्कुल जी, नशा मुक्त भारत अभियान 15 अगस्त 2020 नूं शुरू किया गया सी। इसका मकसद नौजवानों नूं नशियां ते माड़े प्रभावों तो जाणू करवाना ते देश नूं नशा मुक्त बनाना है। अज यह अभियान देश भर में लगातार चल रहा है ते करोड़ों लोगों तक अपना यह सुनेहा पहुँचा चुका है, ते असी भी कोशिश करांगे ते साडे जिहड़े स्रोते ने कोशिश करन अपने आस पास, जे किसी नूं देखते ने कि वह किसी भी तरह की नशे की लत च है तो उन्हूं उहदे बारे जानकारी देन ते नशा मुक्त केंद्र तक पहुँचाण तां कि वह अपने जीवन नूं सही ढंग नाल जी सके।
3: बहुत ही वधिया सहयोग हो सकता है साडे सब वल्लों,
2: बिल्कुल
3: समाज नूं। और एक छोटा जिहा गीत सुन लईए फिर चलदे हां अपने प्रोग्राम दे आखरी सिलसिले वल
2: जी।

0: बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी। तुसी शक्ति रूपा दे तहत सालू मारदा थे मक्का होरा दे जीवन बारे साडे श्रोतियां दे लई बहुत वधिया जानकारी इकट्ठी कीती ते उन्हां तक पहुँचाई।
1: वाकई और अलका जी देखो सानू भी इन शख्सियतों तो प्रेरणा लेनी चाहिए है और वातावरण के नाल एक सांझ पा के रखनी चाहिए है और अपने आस पास हरियावल बना के असी सारे रखिए ताकि साडा जीवन जिहड़ा है आने वाले बच्चों का जीवन है वह हमेशा हमेशा सुरक्षित रहे।
0: बिल्कुल जी, इस चीज़ का ता ही फायदा है कि जे असी इन चीज़ों नू अगे तो अगे पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रखिए।
1: जी तो अलका जी हुण घड़ी दियां सूईयां कह रही कि इजाजत लैंदा समा हो गया है।
0: ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਲਕਾ ਨੂੰ
1: ਮੈਨੂੰ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ।
0: ਨਮਸਕਾਰ।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵਿਹੜੇ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਸ 'ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 1 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਲਵਲੀਨ ਨਿਗਮ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार सबसे लंबी अवधि तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सम्मान व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के

0: दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऐतिहासिक अवसर देश की जनता द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जताए गए अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
2: आज माननीय प्रधानमंत्री जी भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी इसी तरीके से देश की सेवा करते रहे और देश का जो भविष्य बनाने का संकल्प उन्होंने लिया है, भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, उस संकल्प में हम सभी 140 करोड़ देशवासी संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
1: गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में इस अवसर पर कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति बढ़ा रही है। श्री पुरी ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री पुरी ने कहा कि सरकार ऐसी गतिविधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई कर रही है। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुदेंद्र टंडन ने कल मनीला में आयोजित आसियान क्षेत्रीय मंच एआरएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान श्री टंडन ने समकालीन भू राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में एआरएफ की महत्वपूर्ण भूमिका और संवाद तथा कूटनीति के प्रति समर्थन व्यक्त किया। घरेलू शेयर बाजारों में आज आधा प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। ताज़ा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 420 अंक बढ़कर 74,339 और निफ्टी 106 अंक बढ़कर 23,348 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट से ए आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। हुण पेश है साढ़े अज प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्रामा का वेरवा ते उन्हां दा प्रसारण समा। हुण तो कुछ देर बाद 1:15 ते फौजी वीरां दे मनोरंजन लई फिल्मी गीतां दा प्रोग्राम होवेगा फौजी वीरां लई। बाद दोपहर 2:30 आनंद मान नाल लोक गीतां दे प्रोग्राम रंगली धरती दा। अज इस विच तुसी रमनजीत कौर दे गाए लोक गीत सुन सकोगे। चार वज के 2 मिनट ते आनंद मानना सदाबहार गीतां दा। शाम 4:30 तुसी श्री दरबार साहिब अमृतसर तो शब्द कीर्तन दा सीधा प्रसारण सरवण करोगे ते 5:30 सरवण करना साडा रोजाना प्रोग्राम गुरबाणी विचार।

0: शाम 6:30 बजे दा समा रहेगा देहाती प्रोग्राम दा। सात बज के 10 मिनट ते साडे दिल्ली केंद्र तो सुन सकोगे एक खास प्रोग्राम इंफ्रास्ट्रक्चर। सात बज के 45 मिनट ते सुनना समाचार समीक्षा। सात बज के 50 मिनट ते मेरी नई कहानी विच सुन सकोगे कमलेश गुप्ता तो कहानी सफलता की माप। आठ बजे दा समा रहेगा प्रोग्राम जिंदगी हसीन है दा। आठ बज के 45 मिनट ते सुनना समाचार संध्या। 9 बजे न्यूज एट 9, 9:15 बजे स्पॉटलाइट अते 9:30 बजे चर्चा का विषय साडे दिल्ली केंद्र तो। अते 10:02 बजे ते सुन सकोगे प्रोग्राम तुहाडी फरमाइश। एसी साडे अज प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्रामां दा वेरवा ते उन्हां दा प्रसारण समा। खबरां अपने निर्धारित समय ते सुन सकोगे।
1: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
2: सत श्री अकाल पंजाबियो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वालों सहभागी न्याय ते कर कर न्याय लई एक इतिहासिक पहल कीती गई है जिथे मिलेगा तुहाडे केस नू तुरंत सम्मानजनक हल। हिस्सा बनो समाधान समारोह 2026 दा 21-22 ते 23 अगस्त नू सुप्रीम कोर्ट विच विशेष लोक अदालत लग रही है।
3: पर की उसदे लई मैनू दिल्ली जाना पाएगा?
2: जरूरी नहीं, तुसी ऑनलाइन भी जुड़ सकते हो।
3: अप्लाई किवें करिए?
2: सुप्रीम कोर्ट दी वेबसाइट www.sci.gov.in ते गूगल फॉर्म राही बेनती भेजो। याद रखो आखिरी तारीख 31 मई 2026 है। सहायता लई 011-2311-2428 ते संपर्क करो।
3: समाधान समारोह 2026 आपसी सहमत ते पक्का निपटारा।
4: हेलो,
5: नमस्कार। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण आपको याद दिलाता है कि आपके मोबाइल नंबर पर असामान्य उपयोग का पता चला है और सेवा आज निलंबित कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया 9 दबाएं।
6: सावधान, अजेही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला 1 मिनट ले रुको ते सोचो, पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले दोपहर दे 1:10 हो रहे ने। आओ हुन सुनदे हां प्रादेशिक खबरां।

नमस्कार, ए आकाशवाणी है। हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज भारत के सब तो वध समय तक सेवा निभाउण वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बन गए ने। श्री मोदी ने 26 मई 2014 नूं अहुदे दी सहुं चुकी सी। उन्होंने पंडित जवाहर लाल नहरू के रिकॉर्ड नूं पिछे छड्ड दिता है, जिन्हां ने पहली बार 13 मई 1952 नूं चुने हुए प्रधानमंत्री वजों सहुं चुकी अते 27 मई 1964 तक सेवा निभाई। चुने हुए प्रधानमंत्री वजों पंडित नहरू का कार्यकाल 4398 दिन का सी। 26 मई 2014 तो अज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल हूँ 4399 दिन है, जिस नालों भारत के इतिहास में सब तो वध समय तक सेवा निभाउण वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बन गए ने। केंद्र सरकार ने दिहाती विकास लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए दियां योजनावां दा ऐलान कीता है। केंद्रीय दिहाती विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने पहला ही मनरेगा अधीन 30,000 करोड़ रुपए अलॉट कर दिते ने। ये कानून 1 जुलाई तो देश भर में लागू किया।

जाएगा। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह मैंस ने किया है कि सूबा सरकार ने पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड PSEB दी पेपर मूल्यांकन प्रणाली विच बदलाव कर दिया। बोर्ड परीक्षावां विच बराबर अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों नूं हुण बराबर रैंक देने का फैसला किया है। इस फैसले नाल जन्म तरीक नूं टाई ब्रेकर वजों वरतण दी लंबे समय तो प्रचलित रवायत खत्म हो जाएगी। ये अहम फैसला अज PSEB दी बोर्ड मीटिंग दौरान लिया गया। इस फैसले दा आधार 31 मई 2026 नूं करवाए गए सूबा पदरी सम्मान समारोह सितारे जमीन ते दौरान कुछ विद्यार्थियों नाल हुई गलबात तो लिया गया है। इस समागम दौरान मुख्यमंत्री पवन सिंह मान ने 8वीं 10वीं अते 12वीं जमात के जिला टॉपरां नूं सम्मानित किया। इस समय गलबात दौरान कुछ विद्यार्थियों ने दस्या कि चोटी ते रैंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों दे बराबर अंकों वाले विद्यार्थियों नूं सिर्फ उम्र के आधार पर मैरिट सूची विच हेठा रखा जाता है, जिस नाल उन्हां दे रैंक प्रभावित होंदे ने। इस मामले नूं ध्यान

फौजी वीरो जय हिंद। मैं निधि चुगला के हाजिर हाँ फिल्मी गीतां दा ए प्रोग्राम तुहाडे लई खास तौर ते। ते इस प्रोग्राम दी शुरुआत करदे हां फिल्म धूम दे एक गीत दे नाल। इस गीत नूं आवाज़ दित्ती है अभिजीत अते सौम्या राव ने।

फौजी वीरो प्रोग्राम च अगला गीत सुनते हैं सोनू निगम अते अलका याग्निक की आवाज़ विच। फिल्म का नाम है कल हो ना हो।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: मरकजी काबीना की मीटिंग के दौरान काबीना के मिम्बरान ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खड़े होकर इस्तकबाल भी किया। इत्तलात नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव मरकजी काबीना की मीटिंग के बाद नामानिगारों को जानकारी दे रहे हैं।
1: जल जीवन मिशन, कोल गैसिफिकेशन, ये सारे के सारे फैसले हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बहुत मजबूत नींव बनाने का काम करेंगे, जो भारत को लगातार सक्षम बनाने में इनका योगदान रहेगा। धन्यवाद साथियों।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सबसे तवील अरसे तक लगातार मुंतखब वजीर आजम की हैसियत से खिदमात अंजाम देने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर जमहूरिया ने कहा कि यह तारीखी मौका उनकी क्यादत में मुल्क के अवाम के एतमाद और भरोसे की अक्कासी करता है। मरकजी वजरा अमित शाह, डॉक्टर एस जयशंकर, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमन, शिवराज सिंह चौहान और दिगर वजरा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को उनके आज़ाद भारत के मुसलसल सबसे तवील अरसे तक मुंतखब वजीर आजम बनने पर नेक ख्वाहिशात पेश की। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन, दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता और दिल्ली के वजीरों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सबसे तवील अरसे तक खिदमात अंजाम देने वाले मुंतखब वजीर आजम बनने के मौके पर आज नई दिल्ली में एक मंदिर में पूजा अर्चना की। नामानिगारों से बात करते हुए नितिन नबीन ने कहा कि वजीर आजम मोदी की क्यादत ने पूरे मुल्क में एक नई तारीख रकम की है। उन्होंने कहा कि जनाब मोदी की शानदार क्यादत में 25 करोड़ कुंभों को गुर्बत से बाहर लाया गया है। जनाब नितिन नबीन ने यह भी कहा कि पिछले 12 साल के दौरान वजीर आजम ने खवातीन को बाख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज करते हुए माशरे के हर तबके की बहबूद और तरक्की के लिए काम किया है।
2: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, उसमें सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में जो हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार।
0: इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सबसे तवील अरसे तक खिदमात अंजाम देने वाले मुंतखब वजीर आजम बनने के मौके पर नई दिल्ली में एक मंदिर में पूजा अर्चना की। नामानिगारों से बात करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि वजीर आजम मोदी ने शानदार महारत, इत्मीनान और पुख्ताज़्म के साथ मुल्क की रहनुमाई की है और मुल्क का निज़ाम चलाया है। उन्होंने कहा कि जनाब मोदी ने मुल्क के मुस्तकबिल को नई शक्ल देने और विकसित भारत के नजरिए की तकमील का अहद कर रखा है।
3: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
0: आज नई दिल्ली में कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए की एक मीटिंग मुनाकिद होगी। ये मीटिंग हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने और वजीर आजम मोदी के भारत के मुसलसल सबसे तवील अरसे तक मुंतखब वजीर आजम बनने का जश्न मनाने के लिए मुनाकिद की जा रही है। एनडीए की मीटिंग में इत्तेहाद की हुक्मरानी वाली तमाम 22 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के वज़राला और नायब वज़राला और तमाम इत्तेहादी पार्टियों के रहनुमा भी शिरकत करेंगे। इस मीटिंग में मुख्तलिफ कौमी तरक्याती प्रोग्रामों, बुनियादी ढांचे के प्रोग्रामों और मोदी हुकूमत के 2047 तक मुल्क को एक तरक्की याफ्ता मुल्क में तब्दील के विजन पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अफगानिस्तान के कुनार, खोस्त और पक्तिका सूबों में पाकिस्तानी फौज के फिजाई हमलों में कम से कम 13 अफराद मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे थे। एक बयान में तालिबान के तर्जुमान जबीउल्ला मुजाहिद ने इस हमले की मजम्मत की और कहा कि कल रात सिविलियन घरों को निशाना बनाकर यह हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फौज ने एक बार फिर अफगानिस्तान की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने इसे इंसानियत के खिलाफ जुर्म और जारहियत की हरकत करार दिया। गुज़श्ता चंद माह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी में इजाफा होता रहा है और दोनों एक दूसरे पर हमले करते रहे हैं। पेट्रोलियम और कुदरती गैस महकमे के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मुल्क में सीएनजी की कोई किल्लत नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों में पाइप के जरिए पहुंचाई जाने वाली कुदरती गैस पीएनजी की सप्लाई का दायरा बढ़ा रही है और एलपीजी कनेक्शन को पीएनजी कनेक्शन में बदलने की कोशिशें की जा रही हैं।
4: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना सीएनजी की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं।

0: एलपीजी के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू पीएनजी कनेक्शन।
1: ईरान के पासदान इनकलाब ने कहा है कि उन्होंने अब नए हुरमुज के अतराफ अमरीकी हमलों के जवाब में आज खलीज के खत्ते में उर्दुन में अमरीकी फौज के एक ठिकाने और 21 दीगर ठिकानों पर हमले किए हैं। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक अब नए हुरमुज में बंदरगाही शहर सिर्रिक और किस्म जजीरे पर हमला किया गया है। उधर उर्दुन के मुसलह अफवाज ने हमले की तस्दीक की है और कहा है कि उन्होंने अल अजराक की तरफ से ईरान से दागे गए 5 मिसाइलों को मार गिराया गया। उर्दुन की फौज ने कहा है कि उसके फिजाई दिफाई निजाम के जरिए ईरान के इलाके से दागे गए कई प्रोजेक्टाइल्स को कामयाबी के साथ तबाह कर दिया गया। अमेरिका के खलाई इदारे नासा ने आर्टिमिस स्वयं मिशन के लिए खलाबाजों के नामों का ऐलान किया है, जिनमें 3 अमेरिका के और 1 इटली का होगा। यह मिशन अगले साल के अवाखिर में अंजाम दिए जाने का प्रोग्राम है। इसके तहत पहली मरतबा मदार में स्पेस एक्स और ब्लू ऑर्गिन से चांद पर लैंडर्स का टेस्ट किया जाएगा। दिफाई साजो सामान की खरीदारी दिफा के शोबे में महारत के लिए इख्तरात और एमएसएमईज और स्टार्टअप के लिए जांच के मराहिल से मुतालिक एक वर्कशॉप कल नई दिल्ली में मुनाकिद की जाएगी। दिफाई इकोसिस्टम में एमएसएमईज और स्टार्टअप्स की शमूलियत को बढ़ाने और इसके बारे में बेदारी पैदा करना इस तकरीब का मकसद है। इंसानी हकूक की अलमबरदार कई सरकर्दा बैन अलाक़वामी तंजीमों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पुरअमन एहतजाज पर पुरतशद्दुद कार्रवाई करने पर पाकिस्तान के हुक्काम की सख्त नुक्ताचीनी की है। मजकूरा ग्रुपों ने इंटरनेट बंद किए जाने, बड़े पैमाने पर एकतरफा गिरफ्तारियों और ताकत के बेतहाशा इस्तेमाल का हवाला देते हुए कहा कि खत्ते में इंसानी हकूक की सूरत हाल संगीन तरीके से बिगड़ती जा रही है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सबसे तवील अरसे तक भारत के मंतखब वज़ीर आज़म के तौर पर खिदमात अंजाम देने का रिकॉर्ड कायम किया है। मरकजी काबिना ने तारीखी कामयाबियों की सताइश करते हुए एक करारदाद मंजूर की है। वज़ीर आज़म की कामयाबियों और सरकार के 12 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाने के लिए एनडी की मीटिंग नई दिल्ली में होने वाली है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के फिजाई हमलों में 11 बच्चों समेत कम अज़ कम 13 अफराद मारे गए हैं। मगरबी एशिया के खित्ते में कशीदगी में इजाफा हो गया है। अमरीका और ईरान के फोर्सेज ने एक दूसरे पर हमले किए हैं और अमरीका के खलाई इदारे नासा ने आर्टिमिस स्वयं मिशन के लिए खलाबाजों के नामों का ऐलान किया है, जिनमें 3 अमरीका के और 1 इटली का होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स दे ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। फौजी हीरो फौजी वीराली प्रोग्राम जारी है। इस प्रोग्राम च अगला गीत सुनदिया फिल्म बॉलीवुड हॉलीवुड दा इस गीत नू आवाज दिती है सोनू निगम अते अलीशा चिनॉय ने।

इस मस्ती पर गीत तो बाद फौजी वीरों अगला गीत सुनते हैं फिल्म सलाम नमस्ते दा। इस गीत नु गाया है कुणाल गांजावाला अते सुनिधि चौहान ने।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन फोला की खोया की पाया।
0: लड़ीवार नाटक होया देश पराया।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। हुन सुनदिया
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में NDA की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए, अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतरता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर है, देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक

0: शक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके खोए हुए आत्मसम्मान को बहाल करना प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य, दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
1: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस तो संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए काम किया है, इसमें विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण उल्लेखनीय है।
2: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, वे सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में जो हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है।
3: मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया। देश सेवा में जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया, और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है, देश का हर नागरिक आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।
0: विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे और त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेसर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 वर्ष भारतीय गौरव की पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करने के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया और आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया। प्रिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के दशकों के समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 2,169 करोड़ रुपये की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर भी शामिल है।
5: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को भी मंजूरी दी।
5: अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन

0: होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा, इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। दो प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
1: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
2: इस साल बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए। नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास का जो महायज्ञ ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री की टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। ये विषय प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में CNG की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस PNG की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि LPG कनेक्शनों को PNG कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
3: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना CNG की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट LPG के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू PNG कनेक्शन।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि रिजर्व बैंक इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोटों को बंद करके उनके जगह प्लास्टिक नोटों का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित हैं। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमरीका के 5वें बेड़े और कुवैत में अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। साथ ही जॉर्डन में अल अजराक हवाई अड्डे पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया गया। जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने पुष्टि की है कि उन्होंने अजराक क्षेत्र की ओर दागी गई सभी 5 ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। गार्ड कोर ने दावा किया कि उन्होंने क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर 21 लक्ष्यों को निशाना बनाया है। हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि लगभग सभी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था और तत्काल किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले सप्ताह अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ युद्ध विराम अब गंभीर स्थिति में है। लेबनान में हिजबुल्ला द्वारा उत्तरी इसराइल में मिसाइल हमले के बाद इजरायली बलों ने बैरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने भी इजरायली हवाई अड्डे पर हमले का दावा किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत वर्तमान में दोनों

0: देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वॉशिंगटन में हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: अफगानिस्तान के कोणार्क होस्ट और पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 13 लोग मारे गए, इनमें ज्यादातर बच्चे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर कल रात ये हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने इसे मानवीय अपराध और आक्रामकता का कृत्य बताया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। आओ हुण सुनदे हां लोक गीतां दा प्रोग्राम रंगली धरती। अज इस विच तुसी रमनजीत कौर दे गाए लोक गीतां दा आनंद मानोगे।

प्रोग्राम चल रहा है रंगली धरती ते इस विच तुसी आनंद मान रहे हो रमनजीत कौर दे गाए लोक गीतां दा। सुनदे हां अगला लोक गीत काला डोरिया।

0: प्रोग्राम चल रहा है रंगली धरती ते तुसी सुन रहे हो इस विच रमनजीत कौर दे गाए लोक गीत। इस तो पहला कि अग्गे वधिए असी लैने आ एक छोटा जिहा ब्रेक, जल्द वापस लौटदे आ।
1: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो।

चल रहा जी प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां। ते लो जी चिट्ठियां पहुंच चुकियां ने। लिखण वाले ने जमशेदपुर तो हरजिंदर सिंह पाटिया, एंजल पाटिया, नवनीत ते पप्पी पाटिया, पटेल नगर मलौट पंजाब तो डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी, गगनदीप ते बेबी आरजू। कोई भी गीत इन्होंने किया है। नाभा तो लिख रहे ने सोमदत्त कैरव, ज्योति राणी ते गुरमंत। चकला बाजार समाना तो लिख रहे ने पप्पू राजा खुशदिल।

सुरमा जो अक्खां विच पाया जांदा सी। ते सुरमे दे फायदे जे मैं दसां, बेनीफिट दसां, ते सुंदरता दे तौर ते इह अक्खां नूं खूबसूरत अते वड्डियां दिखाउंदा सी। यानी कि तुहाडी जो छोटी छोटी अक्खां ने ना, उह इहनूं ला के वड्डियां वड्डियां लगन लग जांदियां सी। तुसीं धमका सकदे सी, किसे नूं डरा सकदे सी इस सुरमे नूं पा के। मैं ते मजाक कर रही हां। फिलहाल धार्मिक महत्ता दी जे मैं गल करां, इस नूं सुन्नत यानी कि सुंदर आदत मन्या जांदा है, ते अक्सर अक्खां विच इक तों वध वार पाउण दी प्रथा है। यानी कि जिवें कि आपां आईलाइनर इक वारी च ला लैने ना, बट इस नूं थोड़ी जी मेहनत करके ना होर भी सुंदर दिखाउण दे लई तुहानूं इक या दो वार पाउणा पैंदा सी। ते ठंडक दे तौर ते कुदरती जड़ी बूटियां वाला सुरमा अक्खां नूं धुप अते गर्मी तों राहत दिंदा सी। मैं हुणे बाहरों आई हां ना, अंदर स्टूडियो च इन्नी गर्मी लग रही सी ते मेरियां अक्खां झुंधियां गईयां। इन्नी गर्मी लगी कि मेरी अखां लाल हो गई। शायद उस टाइम सोच रही सी जो मिस पूजा का गाना सुनिया सी ना, वो मैं पहला ही सुन लेंदी सुरमा वाला, तो सुरमा पा के आँदी तो मेरी अखां च ठंडक पै जाती। फिलहाल ठंडक तां पेगी जब मैं तुहाड़ी चिट्ठियां पढ़ांगी, ठीक है ना। मैं ते पिंड खैरका सिरसा तो लिख रहे ने इंद्रजीत, कमलजीत, मीनाक्षी, सागर, सरगुण, हनी लॉट ते दर्शन लॉट। पेन कुणियाणा तो लिख रहे ने यानी कि ज़िला फजलका तो पप्पू, अमोर, राजू, फौजी, हरप्रीत कौर, बलजीत, पोत्रे गुरनूर, प्रतिनूर, हरमेश, नवदीप, बबलू ते नाल इन्हां दे बहुत सारे साथी। बागा पुराणा तो सतनाम सिंह, अमरजीत कौर, तेग फतेह सिंह ते नाल इन्हां दे जसगुण। पेंड आदम वाला तहसील फजलका तो सोन सिंह बुक, निशान, सीरत कौर, किरत कौर, अमरलाल, दादी जसवंत कौर ते सारे साथी। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र तो लिख रहे ने अभिजीत, श्रीमती सरिता, प्रिंस एकांश, बदलापुर मुंबई तो सिद्धांत ते प्रणीता, अकार हाइट्स बहादुर बहादुरा नागपुर तो लिख रहे ने वैशाली, शलेश, श्वेता ते ध्वनि ते लाडला टुक टुक। बहुत ही प्यारा नाम जी तुहाडा टुक टुक। ते जो ये चिट्ठी आई है ना, जिन्हां दा नाम है पढ़िया, उन्होंने पोस्ट कार्ड दे उत्ते ना प्रिंटिंग ही करा ली है। यानी कि प्रिंट करा के अपनी ये चिट्ठी रख ली है, ते हर टाइम मतलब जद भी उन्होंने लगता ना टाइम कढ़ के वह सानू भेज देंदे ने। बहुत ही वधिया मेहनत है, बहुत ही चंगा लगता है कि तुसी इन्नी मेहनत करके इस प्रोग्राम में शामिल होते हो। ते अगला खत आदर्श नगर मलौट तो राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरभ शाइना ते निमान शर्मा। ते एनी सॉन्ग दी जो है डिमांड की है ते सप्लाई करनी पड़ेगी, जरूर सप्लाई करांगे। सुनाने जी इन्हां सारयां नूं बहुत ही प्यारा जो गीत है गुरदास मान ते श्रेया घोषाल दी आवाज़ विच तेरे इश्क ने। जी बिल्कुल, इश्क है ता ही इस प्रोग्राम में तुसी शामिल होंदे हो।

खूबसूरत गीत तुसी हुणे हुणे सुनिया गुरदास मान ते श्रेया घोषाल दी आवाज़ विच। ते मैं गल करी सी सुरमे दी, जे बिल्कुल तुहानू दस दिता कि सुरमा पाउण दे नाल अक्खां सोहणियां वड्डियां लगदियां ने, ते नाल दे नाल तुहानू पता है कि इस नूं पाउण दे लई बड़ा सावधानी भी रखनी पैंदी है। ओह किवें? हुण तुसी सोचोगे लै दस ते दिता, फायदे की है। हुण सावधानी भी रखनी पैनी, जे बिल्कुल रखनी पैनी है। की करना पएगा? जिवें कि तुहानू पता है कि ये जो सुरमा है, कई बार बाज़ारां विच सुरमे नू जो है सिक्का यानी कि लीड दे नाल बनाया जांदा है, ते लैंड दे नाल बनाया जान करके सेहत लई हानिकारक हो सकदा है। ते इस दे लई तुहानू जो है बादाम नू जो है जला के थोड़ा जिहा, ओह प्रोसीजर मैं दसांगी किसी होर प्रोग्राम विच कि सुरमा बनाया किस तरह जांदा है। एक बादाम दे नाल बनाया जांदा है, एक लैड दे नाल बनाया जांदा है। ते इस दे पिछे भी कई जो है फैशना करके या बाज़ार विच थोड़े जे मिलावट करके इस नू थोड़ा जिहा हानिकारक जो है समझा जांदा अखां विच पाना। ते इनफेक्शन जी बिल्कुल, इस नूं पाउण दे टाइम बड़ा ही ध्यान रखना पैंदा। जेकर हाथ साफ ना होण जां सुरमे दी सिलाई गंदी होवे तां अक्खां विच इनफेक्शन जिवें कि अक्खां दा फ्लू हो सकदा है। ते बड़े ही सावधानी दे नाल जो सिलाई हुंदी है सुरमे दी, उस नूं साफ करके चंगी तरह तां ही तुसीं अक्खां विच पा सकदे हो। ते सुक्कियां अक्खां विच जो है यानी कि रोज़ाना ते गलत तरीके नाल सुरमा पाउण नाल अक्खां विच खुशकी जां जलन हो सकती है। ते ये भी ध्यान रखना है कि अक्खां जो है मॉइस्चराइज़र यानी कि मूँह धोण तो बाद तुसी चंगी तरह अपने फेस ते जो है मॉइस्चराइज़र करना है यानी कि क्रीम ला के

मन्नत नूर दी खूबसूरत आवाज सुन तो बाद दसदे आं जी कि जांदे जांदे यानी कि 5 मिंट रह गए ने ते जांदे जांदे आपां थोड़ी जी गल कर सकदे आं ना ते मैं दस रही सी कि अखां बारे ते अखां नूं सुंदर बनाउण अते उहनां दी खूबसूरती वधाउण दे लई रोज़ाना अखां नूं ठंडे पानी नाल धोओ अते 7-8 घंटे दी नींद चंगी नींद जरूर लो। अपनी खुराक विच यानी कि खुराक डाइट विच विटामिन ए सी अते ई नाल भरपूर भोजन जिवें कि गाजर बदाम अते पालक जरूर शामिल करो ते इस दे नाल ही अखां नूं डिजिटल तनाव तो बचाउण दे लई अपनी अखां नूं या अपने आप नूं जो है मोबाइल स्क्रीन या टीवी स्क्रीन या लैपटॉप दी स्क्रीन तो दूर रखोगे तो तुहाडियां अखां बहुत ही खूबसूरत रहणगियां। नहीं तो तुहानूं पता ही है कि 2 अखां तो बाद 4 अखां होण च टाइम नहीं लगता। हुण 4 अखां तुसीं कहोगे कि 2 तां अपणियां ते 2 चश्मे दियां ते नेल लगाना चाहते ना कि तुहानूं कोई चश्मिच कवे। चलो खैर लग भी गई हैं तो वह तुसी अपने आप जिम्मेवार हो तो इस दे लई बचाओ दे लई विटामिन ए सी ते ई नाल भरपूर भोजन जिवें कि मैं तुहानूं दसे दिता कि वह जरूर लो, फाइबर जरूर लो, अपने जो है पेट नूं साफ रखो, जो है फास्ट फूड ना खाओ, बाज़ार दी चीज़ां ज़्यादा ना खाओ तो चंगा रहेगा। तो इस तों इलावा घर दी बनिया हुई चीज़ां ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟਿਪ, ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਪਟੋਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਖੈਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਧਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਬੇਟੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਦੱਸਿਓ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਲਛਮਣ, ਦਰਸ਼ਨ, ਪਾਲੀ, ਦੇਵ ਅਤੇ ਨਛੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਲੌਟ ਤੋਂ ਰਮੇਸ਼, ਮਹੇਸ਼, ਸੁਸ਼ਮਾ, ਜਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਨੋਦ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਣਜੀਤ, ਸੋਲੰਕੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ,

नमस्कार। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले शाम दे 4 वज गए ने। हुण साडी अज दी दूजी सभा शुरू हुंदी है। सभा दी शुरुआत सुनदे हां न्यूज़ हेडलाइंस। केंद्रीय मंत्री मंडल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे लगातार सब तो लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बनन ते शलाघा करदे हुए एक मता पास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वल्लों आज भारत दे सब तो वध समय तक सेवा निभाउण वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बनन ते देश विदेश तो वधाई देण दा सिलसिला जारी। सरकार वल्लों राज्यां अते केंद्र शासित प्रदेशां लई 95,692 करोड़ दे अंतरिम बजट अलॉटमेंट की तजवीज़। केंद्रीय पेट्रोलियम अते कुदरती गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा देश विच CNG दी कोई कमी नहीं है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज तो बुल्गारिया अते फिनलैंड दे 2 दिना सरकारी दौरे ते। हरियाणा राज महिला कमीशन दी चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने अपने अहुदे तो अस्तीफा दे दिता। सूबा सरकार ने पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड की पेपर मुलंकन प्रणाली विच बदलाव करदिया बोर्ड परीक्षावां विच बराबर अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों नूं हुण बराबर रैंक देण दा फैसला किया। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों पाकिस्तान स्थित इतिहासक गुरधामां दे दर्शनां लई सिख श्रद्धालुआं दा जत्था जयकारियां दी गूंज नाल रवाना होया। भीखी विखे एक मोटरसाइकिल रेहड़ी अते ट्राले विचकार होई टक्कर कारण 2 नौजवानों की मौत। अफगानिस्तान के कुनार खोस अते पतिका प्रांता विच पाकिस्तानी फौज के हवाई हमलों विच बच्चियां समेत 13 लोग मारे गए। अते क्रिकेट विच भारत ए ने कल त्रिकोणी लड़ी के पहले मैच विच श्रीलंका ए नू 8 दौड़ा नाल हराया। ए सी अज दियां न्यूज़ हेडलाइंस। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से ए आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। आओ हुण आनंद मानदे हां सदाबहार फिल्मी गीता दा। ते पहला गीत सुनदे हां मुकेश जी दी आवाज़ विच। फिल्म दा नाम है संगम।

दीन दुनिया तेरी टेक, सब मह रविया साहिब एक। अकाल पुरख न्योट्यां दी ओट, नितरियां दी तिर, न्यासरियां दा आसरा है। टेक, आसरा, पना, ए समान अर्थी शब्द हन, पर ए सच है कि टेक, आसरा, ओट, शरण उसे दी लुड़ींदी है जो अपने आप तो ताकतवर है, समर्था वाला है। तांते फिर अकाल पुरख प्रभु अग्गे दीना वांगू बेनती करनी चाहिदी है। हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या की जाए, बचनी तोर मोर मन माने, जन का पूरन दी जाए। सरवण करदे आं भाई गुरमेल सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया।

हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या की जाए। बचनी तोर मोर मन माने, जन का पूरन दी जाए। आप जी सरवण कर रहे सो भाई गुरमेल सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द। प्रभु दा ओट आसरा टेक शरण कल्याणकारी है। प्रभु दे चरण शरण विच किसे प्रकार दा दुख नहीं व्यापदा। ऐसे नाम दी प्राप्ति हुंदी है जिसनु जपिया अकाल पुरख प्रभु किरपा करके अपने प्यारियां दी बांह फड़के उनानु पव सागर तो पार कर दिंदा है। राग तनासरी विच गुर फरमान है, हर चरण सरन गोबिंद दुख पंजना, दास अपने कौ नाम देवो, दृष्ट प्रभ तारो कृपा करता रहो, पूजा गहकूप ते कार्ड लेवो। सरवण करदे हां भाई गुरमीत सिंह शांत ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

0: हर चरण शरण गोविंद दुख पंजना, दास अपने कौ नाम देवो, दृष्ट प्रभ तारहो कृपा करता रहो, पूजा गहकूप ते कार्ड लेवो। इस शब्द गायन कीता सी भाई गुरमीत सिंह शांत ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे हां इस शब्द दी व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी बलवंत सिंह।
1: तनासरी महला पंजवां, कर नौवां पड़ताल, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर चरण सरन गोविंद दुख पंजना, दास अपने को नाम देवो, दृष्ट प्रभ तारू कृपा कर तारू, पूजा गह कूप ते काड लेवो रहाओ। काम क्रोध कर अंध माया के बंद, अनक दुखा तन शाद पूरे, प्रभ बिना आन न राखन हारा, नाम सिमराव हो सरन सूरे। पतत उदारणा जी जंत तारणा, वेद उचार नहीं अंत पायो, गुण है सुख सागरा ब्रह्म रत्नागरा, भगत वशल नानक गायो। विचार अधीन शब्द साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी वल्लों तनासरी राग विच उचारण कीता होया है। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग 683 उपर सुशोभित है। इस शब्द नू नौवें घर विच गाउण दी हदायत कीती हुई है, जो पड़ताल गायन शैली दे अनुसार गायन करन दी हदायत है। इस शब्द की एक विशेषता यह भी है कि शब्द के आरंभ में पहला मूल मंत्र का संखेप स्वरूप दर्ज किया होया है, जो इस गल का प्रतीक है कि परमात्मा नूं मिलन लई सच्चे गुरु की कृपा सदका मिलिया जा सकता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अंदर तनासरी राग नूं दसवां स्थान प्राप्त है।

सरनी आयो नाथ निधान, नाम प्रीत लागी मन पीतर, मागन कौ हरदान। आप जी सरवण कर रहे सो भाई बलबीर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ये शब्द।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों की निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्रियों और विश्व नेताओं ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक नई दिल्ली में जारी है। ये बैठक एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर आयोजित की गई है। गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों सहित भाजपा के शीर्ष नेता बैठक में शामिल हैं। बैठक में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना कार्यक्रमों और देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के सरकार के दृष्टिकोण की समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाता है और कई प्रतिबद्धताओं तथा उपलब्धियों को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने बताया कि इन प्रस्तावों में युवाओं के लिए कार्यक्रमों का विशेष उल्लेख किया गया है।
1: प्रधानमंत्री जी युवा शक्ति को भारत की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, उद्यमियता और फिटनेस को बहुत एक एम्फेसिस के साथ कई तरह के प्रोग्राम्स बनाए, जिसमें भारत को एक बहुत बड़ी खेल शक्ति के रूप में उभरा है, वर्ल्ड के 3 लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के रूप में उभरा है। मिशन चंद्रयान और वैज्ञानिक क्षमता हमारी देश की इस कार्यकाल में बहुत बड़ी है।
0: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव का राज्यसभा से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लगभग एक सप्ताह से तृणमूल कांग्रेस के अंदर बढ़ती आंतरिक कलह के बीच पार्टी के अब तक 2 सांसदों ने इस्तीफा दिया है। सुश्री देव ने इस्तीफे के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा से नई दिल्ली में मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। ये उपग्रह संकेतों की प्राप्ति और ट्रैकिंग में बाधा उत्पन्न करने के साथ साथ भ्रामक सिग्नल भेजकर दुश्मन की स्थिति निर्धारण क्षमता को प्रभावित कर सकती है। इन प्रणालियों के शामिल होने से अधिक जोखिम वाले वातावरण में भारतीय नौसेना के जहाजों की संचालन सुरक्षा में वृद्धि होगी। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन

0: किया है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने पेरू की इनेस कैस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियो पिन चियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ 6:05 ਤੇ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ।

हुण तो कुछ समय बाद यानी शाम 6:30 बजे पेश करांगे देहाती प्रोग्राम। अज इस विच काम दियां गल्लां, अज दे पा, कल दे प्रोग्राम, मौसम दे हाल ते गीत संगीत दे नाल नाल सोहणी फसलां च खादां बारे जानकारी देणगे डॉक्टर जगदीप सिंह। ਸੱਤ:10 ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 12 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੱਤ:45 ਤੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੱਤ:50 ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਾਰਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ कमलेश गुप्ता दी कहानी सुनोगे, शीर्षक सफलता की भाप। रात 8 बजे पेश करेंगे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। रात 9:15 बजे स्पॉटलाइट ते 9:30 बजे चर्चा का विषय है। प्रोग्राम तुसे सुनोगे साडे दिल्ली केंद्र तो। रात 10 बजे समा रहेगा जी मुख खबरां दा। ਦਸ:02 पेश करेंगे प्रोग्राम थोड़ी फरमाइश, जिस विच तुसी अपनी पसंद दे गीत सुन सकोगे फोनिंग ते व्हाट्सएप राही। ग्यारह:10 ते प्रोग्राम सौगात पेश करेंगे DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दे जलंधर केंद्र तो। सो इसी जी प्रोग्रामा दा फेरफार।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: सत श्री अकाल पंजाबियो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वालों सहभागी न्याय ते कर कर न्याय लई एक इतिहासिक पहल कीती गई है, जिथे मिलेगा तुहाडे केस नूं तुरंत सम्मानजनक हल। हिस्सा बनो समाधान समारोह 2026 दा 21-22 ते 23 अगस्त नूं सुप्रीम कोर्ट विच विशेष लोक अदालत लग रही है।
2: पर की उस दे लई मैनूं दिल्ली जाना पएगा?
1: जरूरी नहीं, तुसी ऑनलाइन भी जुड़ सकते हो।
2: अप्लाई किवें करिए?
1: सुप्रीम कोर्ट दी वेबसाइट www.sei.gov.in ते गूगल फॉर्म राहीं बेनती भेजो। याद रखो, आखिरी तारीख 31 मई 2026 है। सहायता लई 011-23-11-2428 ते संपर्क करो।
2: समाधान समारोह 2026 आपसी सहमत ते पक्का निपटारा।
0: सरकार दे माण मत्ते 12 साल पूरे होण ते आकाशवाणी दा समाचार सेवा विभाग 1 जून तो प्रसारित कर रहा है 21 लड़ियां दा एक विशेष प्रोग्राम। 35 मिनट दे इस प्रोग्राम दा प्रसारण हुंदा है रोजाना शाम 7:10 तो लेके 7:45 तक। इसलिए शाम 7:30 बजे प्रसारित होण वालियां पंजाबी खबरां

0: प्रसारण रोज शाम 7 बजे किया जा रहा है। सरकार दे माण मत्ते 12 साल की कामयाबी की कहानी आकाशवाणी दे समाचार सेवा विभाग की जुबानी।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर 1, ये परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकते हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच। परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर 1।

0: विशाल दा ना सब कुछ सही चलता है।
1: कल इहदे बैंक खाते विच 15,000 रुपए दा फ्रॉड होया है, पता है?
0: पर इहनूं तां कोई टेंशन ही नहीं, वेख ना।
2: टेंशन क्यों, मेरी कोई गलती नहीं सी। फिर भी फ्रॉड होने ते मैं तुरंत बैंक नूं इहदी खबर दित्ती। RBI कहिंदा है जे तुहाडे खाते चों किसे ने धोखे नाल पैसे कढवाए ने तां बैंक नूं छेती तों छेती खबर करो। 3 दिनां दे अंदर कीती तां कोई नुकसान नहीं होवेगा, जिन्नी देर करोगे उन्ना वध नुकसान। अपने बैंक खाते दा पिन, पासवर्ड अते OTP किसे नूं भी ना दसो। RBI कहिंदा है जानकार बनो, सचेत रहो।
3: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਗਾਨ।

0: अस आकाशवाणी दी जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले छिवज के वीमेन ढोरे ने हुण तुसी सुणोगे प्रादेशिक खबरां बस कुछ ही पलां च।
1: सुनो, की तुसी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बारे सुनिया है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इस नाल तो घर सूर्य घर बन जाता है, यानी तो बिजली का बिल जीरो।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां इस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा। पहला बुलेटिन दियां खास खबरां। मोदी सरकार दे 12 साल पूरे होने के सिलसिले च अज राष्ट्रीय लोकतंत्री गठजोड़

0: 2047 तक विकसित भारत लई समावेशी मनुखी विकास रख्या गया। यह विशा हरेक भारती की भलाई ते विकास ते केंद्रित है। गवर्निंग कौंसल की मीटिंग इस दृष्टिकोण नूं साकार करन ते देश दे हरेक नागरिक लई इस नूं ठोस मापनयोग नतीजा च अनुवाद करन ते विचार वटांदरा करेगी। जवाबदेही ते मापनयोग प्रभाव नूं यकीनी बनाउण लई थोड़े दरम्याने ते लंबे समें दे नतीजां दी निगरानी करन लई इक विधि वी स्थापित कीती जावेगी। सरकार ने कपड़ा सनत लई उत्पादन नाल जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजना के तीजे दौर के तहत 22 नवे बिनेकारा मंजूरी दे दी है। कपड़ा मंत्रालय ने कहा है कि योजना के तीजे दौर के तहत कुल 96 कंपनिया की चोण की गई है, जिन्हों का निवेश 12,822 करोड़ रुपए तो वध अते अनुमानित टर्नओवर 58,000 करोड़ रुपए तो वध है। हरियाणा राज महिला कमिशन की चेयरपर्सन रेणू भाटिया ने अपने अहुदे तो अस्तीफा दे दिता है। अपने पिछले कार्यकाल का हवाला देंदे हुए रेणू भाटिया ने कहा कि उन्होंने कमिशन की चेयरपर्सन वजों अपनी ड्यूटियां पूरी ईमानदारी ते समर्पण नाल निभाईयां। अपने अस्तीफा पत्र च उन्होंने स्पष्ट किया है कि उस स्वेच्छा नाल अस्तीफा दे रहे हैं ते सरकार नूं इस नूं स्वीकार करन दी बेनती की। कुरुक्षेत्र च एक मामले संबंधी हस्पताल के निरीक्षण दौरान नर्सिंग अधिकारियों बारे श्रीमती रेणू भाटिया दी टिप्पणियां कारण देश भर के नर्सिंग अधिकारी विरोध प्रदर्शन ते सन। कुरुक्षेत्र हस्पताल के नर्सिंग स्टाफ ने सोमवार को 2 घंटे की हड़ताल की। हरियाणा नर्सिंग अफसर वैलफेयर एसोसीएशन ने भी कल दोपहर 10 से 12 बजे तक पेन डाउन हड़ताल की। विदेश मंत्री डॉक्टर अजय शंकर ने अज बुल्गारिया के सोफिया च राष्ट्रीय इतिहासक अजायब घर का दौरा किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट च डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने हजारा साल पुराने कलाकृतियां के एक महत्वपूर्ण संग्रह को देखे। उन्होंने अमीर इतिहास के सभ्याचारक विरासत के वख-वख पहलुओं की संभाल बारे सीखा। डॉक्टर जयशंकर सोफिया का दौरा कर रहे हैं, जिथे वह बुल्गारिया के विदेश मंत्री नाल मुलाकात भी करेंगे। कई प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मनुखी अधिकार संगठनों ने पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर च शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों दबाने लई पाकिस्तानी अधिकारियों वालों की गई हिंसक कार्रवाई की सख्त आलोचना की है। इंटरनेट बंद, गैर कानूनी गिरफ्तारियां ते ताकत की वरतों का हवाला दिंदिया उन्होंने स्थिति नूं गंभीर दस्या। अंतरराष्ट्रीय मनुखी अधिकार फाउंडेशन ने एक संगठन नूं दहशतगर्दी समूह वजों नामजद करने के फैसले की निंदा करदिया इस नूं संगठन की आजादी की उलंघना कहा है। अफगानिस्तान के साबका राष्ट्रपति हामिद करजई ने कुनार खोसत अते पख्तिका प्रांतां च हवाई हमलों दौरान औरतों ते बच्चों समेत कई नागरिकों के मारे जाने लई पाकिस्तान की सख्त निंदा की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को खेतर च अपनी दुश्मनी भरिया कार्रवाइया स्वीकार करना चाहिए तो जंग के तबाही की अपनी नीति को छड्ड देना चाहिए। श्री करजई ने यह टिप्पणियां अज तालिबान के बुलारे हबीउल्ला मुजाहिद वालों कुनार खोसत ते पख्तिका च पाकिस्तानी फौजी हवाई हमलों च 13 नागरिकां जिन्हां विच ज़्यादातर बच्चे शामिल ने दी मौत की पुष्टि तो बाद कीतियां ने। फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने अज ऐलान किया है कि वह भारत में अपना पहला AI समर्थ डेटा सेंटर स्थापित करेगी। समझौते तहत मेटा और रिलायंस इंडस्ट्रीज जामनगर गुजरात में 168 MW डेटा सेंटर बनाएंगे। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों पंजाब पाकिस्तान स्थित इतिहासिक गुरुधामों के दर्शनों लिए सिख श्रद्धालुओं के जत्थे अज कमेटी दफ्तर तो जयकारों की गूंज नाल रवाना किया गया। इस मौके श्रोमणी कमेटी वालों जत्थे च शामिल श्रद्धालुओं सिरोपाओ दे के सन्मानित भी किया गया। यह जत्था गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिहाड़े मौके पाकिस्तान स्थित गुरद्वारा श्री ननकाणा साहब, गुरद्वारा श्री पंजा साहब, गुरद्वारा रूड़ी साहब, गुरद्वारा सच्चा सौदा और गुरद्वारा करतारपुर साहब समेत होरना इतिहासिक गुरधामों के दर्शन करेगा। जत्था 19 जून को वतन वापस परतेगा। अफगानिस्तान खिलाफ 3 मैचों की एक रोज़ा लड़ी तो पहला हार्दिक पांड्या सट कारण टीम तो बाहर हो गए हैं। विराट कोहली पहला ही टीम च नहीं हैं। तो आखिर च खास खबर एक बार फिर तो मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के सिलसिले में अज राष्ट्रीय लोकतंत्री गठजोड़ की नवी दिल्ली बैठक जारी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अज एक मता पास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सब तो लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बनने पर वधाई दी। देश विदेश तो वधाई का सिलसिला जारी। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय जल सेना लई भी उन्नत समर्था वाली ग्लोबल नैविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जैमरा की खरीद लई 449 करोड़ के समझौते ते दस्तखत किए। हरियाणा राज महिला कमिशन की चेयरपर्सन रेणू भाटिया ने अपने अहुदे तो अस्तीफा दिता। अफगानिस्तान खिलाफ 3 मैचों की एक रोज़ा लड़ी तो पहला हार्दिक पांड्या सट कारण टीम तो बाहर हुए। इस ही राष्ट्रीय खबर का यह बुलेटिन खत्म होंगे। राष्ट्रीय खबर का अगला बुलेटिन तुम सुनोगे कल सवेरे 8:30। नमस्कार।
1: This is Akashvani. In the special series, 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke, now we bring you an interview with Dr. S. Jaishankar, Minister of External Affairs, on India's new anti-terror doctrine. Interviewer is Dr. Sriram Chaulia.

में खमीर उठा खोल रखा था। चूल्हे पर सांभर उबल रहा था और भाप से भरे उस छोटे से कमरे में खड़ी थी शांति। लोग उसे नाम से कम इडली अम्मा कहकर ज्यादा बुलाते थे। 20 साल से उसकी सुबह सूरज उगने से पहले होती थी। हर दिन वही क्रम, चावल पीसना, नारियल घिसना, स्टील के डिब्बे जमाना और फिर सुबह होने से पहले अपना ठेला लेकर निकल जाना। गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात, उसकी जिंदगी कभी नहीं रुकी। लेकिन उस सुबह कुछ अलग था। आज उसने पहली बार अपने ठेले पर आज बंद रहेगा का कागज लगाया था। उसकी पड़ोसन सरला ने हैरानी से पूछा था, अरे शांति, तबीयत तो ठीक है ना? तूने आज ठेला बंद करा है? शांति हल्के से मुस्कराई, नहीं रे, आज मेरे बेटे ने बुलाया है अपने ऑफिस। सरला की आंखें चमक उठी। अच्छा, बड़ी नौकरी करता है ना तेरा संदीप? शांति ने साड़ी की पल्लू ठीक करते हुए धीमे से कहा, क्या करता है, कितना बड़ा काम है, ये सब तो मुझे समझ नहीं आता। बस इतना पता है, बहुत मेहनत करता है। उसके बेटे का नाम था संदीप। सीधा साधा, कम बोलने वाला, लेकिन अंदर से बहुत मजबूत। जब बाकी बच्चे गली में क्रिकेट खेलते थे, संदीप अपनी माँ के साथ इडली के डिब्बे जमाया करता था। उसके पिता जब घर छोड़कर चले गए, तब संदीप सिर्फ 9 साल का था। उस रात शांति पूरी रात रोती रही थी। लेकिन अगली सुबह जब उसने भारी पतीले को उठाने की कोशिश की, तब छोटे से संदीप ने आगे बढ़कर कहा, अम्मा तुम रहने दो, मैं पकड़ लेता हूँ। उस दिन पहली बार शांति को लगा कि उसका बेटा अचानक एक ही दिन में बड़ा हो गया है। धीरे धीरे जिंदगी और कठिन होती गई। ठेले का किराया, घर का राशन, स्कूल की फीस। कई रातें ऐसी भी थीं जब शांति खुद सिर्फ पानी पीकर सो गई, लेकिन उसने बेटे की किताबें कभी अधूरी नहीं रहने दी। संदीप भी सब समझता था। वो स्कूल से लौटकर सीधे ठेले पर आ जाता। ग्राहकों को प्लेट देना, पैसे गिनना और रात को बर्तन धोना और फिर देर रात तक पढ़ाई। कई बार शांति उसे देखती और कहती, इतना मत पढ़ बेटा, आंखें खराब हो जाएगी। संदीप हंस देता, अभी आंखें थकेगी अम्मा, तभी तो आगे की जिंदगी आसान दिखेगी। शांति को उसकी आधी बातें समझ आती थी, आधी नहीं। लेकिन उसे अपने बेटे की आंखों में भरोसा दिखता था। समय बीतता गया। संदीप ने स्कॉलरशिप निकाली, बड़े कॉलेज में दाखिला मिला, फिर शहर की नामी कंपनी में नौकरी। अब उसके कपड़े बदल गए थे, बात करने का तरीका बदल गया था, मोबाइल पर अंग्रेजी ज़्यादा हो गई थी। लेकिन हर महीने की पहली तारीख को पैसे आते ही सबसे पहले शांति के घर राशन पहुंचता था। एक दिन अचानक संदीप का फोन आया, अम्मा अगले शुक्रवार खाली रहना। माँ ने बोला, क्यों? ऑफिस में एक कार्यक्रम है, आपको आना है, संदीप ने बताया। शांति हंसी, मैं वहाँ क्या करूँगी, बड़े लोगों की जगह होगी। संदीप कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अम्मा मेरे लिए सबसे बड़ी आप हो। शांति मुस्करा दी। उसने ज़्यादा सवाल नहीं किए। उसने अपनी वही पुरानी हल्की गुलाबी साड़ी निकाली, वो साड़ी जो उसने बहुत संभाल के रखी थी। पहली बार अपनी छोटी ननद की शादी में पहनी थी और दूसरी बार संदीप के स्कूल के सम्मान समारोह में, और आज तीसरी बार अपने बेटे के कहने पर पहन रही थी। उसने साड़ी की किनारी को प्यार से हाथों से ठीक किया, जैसे कपड़ा नहीं कोई पुरानी याद सहला रही हो। फिर चुपचाप 200 रुपये अलग रख दिए ऑटो के लिए। शुक्रवार की सुबह जब उस विशाल कांच की इमारत के सामने पहुंची, तो उसके कदम खुद ब खुद धीमे पड़ गए। इतनी चमक, इतनी सफाई, इतने बड़े बड़े दरवाजे। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने मुस्कुराकर पूछा, मैम आपका नाम? जी मैं शांति, संदीप की माँ। लड़की तुरंत खड़ी हो गई। ओह मैम, आप ही कहाँ, हम इंतज़ार कर रहे थे। शांति घबरा गई, मेरा? जी मैम, कृपया आप हमारे साथ चले। उसे एक बड़े सभागार में ले जाया गया। सामने मंच था, चारों तरफ रोशनी, सैकड़ों लोग, और सबसे आगे एक सीट पर लिखा था

मिसेस शांति। वो घबरा गई। बेटा, कहीं गलती से तो मुझे आप यहाँ नहीं बिठा रहे हो? साथ खड़े कर्मचारी ने मुस्करा कर कहा, नहीं मैम, ये सीट सिर्फ आपके लिए है। शांति बैठ तो गई, लेकिन उसका दिल बेहद तेज़ी से धड़क रहा था। उसने चारों तरफ देखा, महंगे कपड़े पहने लोग, धीमी अंग्रेजी में बातचीत, हाथों में लैपटॉप और उसे बीच पीछे बैठे दो लोग जो आपस में बात कर रहे थे। आज कंपनी के नए मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम अनाउंस होगा। शांति को कुछ समझ नहीं आया। उसने बस इतना सोचा कि लगता है कोई बहुत बड़े साहब आने वाले हैं। कुछ देर बाद रोशनी धीमी हुई। मंच पर कंपनी के चेयरमैन आए। उन्होंने कंपनी की सफलता, भविष्य और नए नेतृत्व की बातें शुरू की, लेकिन शांति का ध्यान उन बातों में कहाँ था? शांति की आंखें तो अपने बेटे को ढूंढ रही थीं। तभी अचानक स्क्रीन पे एक तस्वीर उभरी। पुराना सा ठेला, भाप उड़ाती इडली और पीछे खड़ी शांति। स्क्रीन पर अपनी तस्वीर देखते ही शांति कुछ पल के लिए चढ़ हो गई। उसकी आंखें स्क्रीन पर टिक गई और दिल की धड़कनें अचानक बहुत तेज़ हो गई। फिर दूसरी तस्वीर, छोटा सा संदीप स्कूल ड्रेस पे ठेले पर प्लेट लगाते हुए। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। शांति की आंखें भर आई। तभी मंच के पीछे से आवाज़ आई, मेरी माँ कहती थी, गरीबी घर में हो तो चल जाता है, बस हिम्मत में नहीं होनी चाहिए। स्पॉटलाइट चली और मंच पर संदीप खड़ा था, ब्लैक सूट में, आत्मविश्वास से भरा, लेकिन आंखों में वही पुराना अपनापन। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। संदीप धीरे धीरे माइक तक आया और उसने माँ की तरफ देखा और मुस्करा कर कहा, मैंने जिंदगी में बहुत बड़े बड़े लोगों से मुलाकात की है, लेकिन सबसे मजबूत इंसान मुझे आज भी वही लगती है जो हर सुबह 4 बजे उठकर इडली बनाती थी। हॉल एकदम शांत था। जब मेरे पास किताबें नहीं थी, इन्होंने अपने गहने बेच दिए। जब फीस नहीं थी, इन्होंने दो दो शिफ्ट में ठेला लगाया, और जब मैं हारने लगा था तब ये कहती थी, थक जाना लेकिन रुकना मत। अब कई लोगों की आंखें नम हो चुकी थीं। संदीप की आवाज़ भारी हो गई, आज लोग मुझे इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर कहेंगे, लेकिन सच ये है कि मैं आज भी उसी ठेले वाली माँ का बेटा हूँ। इतना कहकर वो मंच से नीचे उतरा, अपनी माँ के सामने आकर रुका और सबके सामने झुक कर उनके पाँव छू लिए। शांति घबरा गई, अरे बेटा ये क्या कर रहे हो? संदीप ने माँ की तरफ देखते हुए कहा, जिस माँ ने मेरी जिंदगी संवारने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उसके सामने झुकने में भला शर्म कैसी। पूरा सभाकार खड़ा हो गया। तालियों की आवाज़ लगातार गूंजती रही और शोर के बीच शांति ने कांपते हाथों से बेटे का चेहरा छुआ और धीरे से पूछा, बेटा सुबह से तुमने कुछ खाया है? संदीप हंस पड़ा। आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर वही बचपन वाले मुस्कान। क्योंकि माँ चाहे बेटे को कितना भी बड़ा आदमी बनते देख ले, उसके लिए हमेशा वही बच्चा रहता है जो कभी स्कूल जाते वक्त आधी इडली छोड़कर भाग जाता था। उस दिन उस मंच पर सिर्फ एक नए मैनेजिंग डायरेक्टर का स्वागत नहीं हुआ था, सम्मान हुआ था उन अनगणित माओं का जो खुद धूप में चलती हैं ताकि उनके बच्चों का भविष्य उजाले में रह सके। क्योंकि दुनिया अक्सर सफलता के मंच पर खड़े इंसान को देखती है, लेकिन उस मंच तक पहुंचाने वाले फटे हाथों को नहीं देखती। हर बड़ी ऑफिस, हर ऊंची कुर्सी और हर चमकती पहचान के पीछे कहीं न कहीं किसी माँ की अधूरी नींद, किसी पिता का टूटा सपना या किसी गरीब घर का चुपचाप किया त्याग छुपा होता है। इसलिए कभी किसी छोटे काम को छोटा मत समझिए, क्योंकि कई बार सड़क किनारे लगाने वाला एक छोटा सा ठेला भविष्य के सबसे बड़े सपनों की नींव बन जाता है। और याद रखिए, संघर्ष कभी इंसान को छोटा नहीं बनाता, संघर्ष ही इंसान को उस ऊंचाई तक लेके जाता है जहाँ पहुँचकर

0: पूरी दुनिया खड़े होकर तालियां बजाती है।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी वार्ता प्रोग्राम में कहानी सफलता की भाव। वाचिका कमलेश गुप्ता। असी आकाशवाणी दी जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुन पेशे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है।

जिंदगी हसीन है सुन वाले सारे ही श्रोतियां नूं सोनिया सैनी दा नमस्कार जी। श्रोतियो तुसी आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र ते इस प्रोग्राम दा आनंद माण रहे हो। केंद्र की सच्चा प्यार ओ है जो निष्काम होवे, किसे स्वार्थ तो बिना कीता जावे, एक दूजे की इज्जत भरोसे ते समझ ते आधारित हुंदा है। समर्पण का अर्थ है अपने रिश्ते प्रति पूरी निष्ठा ते वफादारी रखना। सच्चे प्यार विच सुख दुख हर हालात का मिल के सामना किया जाता है। इस विच त्याग धीरज ते एक दूजे दीआं भावनावां दी कदर भी शामिल हुंदी है। समर्पण रिश्तियां नूं मजबूत ते लंबे समय तक कायम रखता है। सच्चा प्यार समर्पण जीवन नूं खुशहाल ते अर्थपूर्ण बनाता है।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: अंतराल तो बाद एक बार फिर तो सारे ही सुनने वालों का स्वागत करते हैं जी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र ते। तुसी इस वेले सुन रहे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। जी हाँ, जिंदगी एक किताब वांग है। हर एक दिन नवा सफा हुंदा है। गलतियां तो सीखो ते हार तो कदे डरो ना। मुश्किलां ही तुहानू मजबूत बनाउंदियां ने। सबर ते मेहनत कदे भी व्यर्थ नहीं जांदे। अपने सुपनियां ते भरोसा रखो। हर सवेर नवी उम्मीद लैके आउंदी है। अगे वधदे रहो ते यकीन मनो, मंजिल जरूर मिलेगी।

जी श्रोतियों, आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र ते तुसी इस वेले सुन रहे जो प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। कई बार जिंदगी विच एहो जिहा मौका आउंदा है जदों राह बड़ी औखे लगन लग जांदे ने, पर जदों राह औखे लगन उदों हौसले ते यकीन रखो। तूफाना तो डरन वाले कदे भी किनारे ते नहीं लगते। हर चुनौती एक नवा मौका हुंदी है। अपनी काबिलियत ते हमेशा यकीन रखो। मेहनत का फल चाहे देर नाल पर मिलदा जरूर है। सकारात्मक सोच ही इंसान दी असली ताकत है। सो कदे भी हार ना मन्नो।

0: हेलो,
1: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
2: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
3: मुंह मिठा करन लगे हो, नौकरी लागे लग दी है, मुबारका फेरते, पर किते उन्होंने नौकरी देन तो पहला कोई पैसे जमा करवाउन दी गल ता नहीं कही। जे कही है ता फिर जागरूक बनो, ध्यान रखो, क्योंकि आजकल ए ठगण दे नवे तरीके ने, क्योंकि नौकरी देन वाले कदे भी पैसे नहीं मांगदे।
4: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
5: अंतराल तो बाद एक बार फिर तो सारे ही सुनने वालों का स्वागत करते हैं जी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र ते। तुसी इस वेले सुन रहे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਸੀਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ 8:45 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਧਿਆ, 9 ਵਜੇ ਨਿਊਜ਼ ਐਟ 9, 9:15 ਵਜੇ ਸਪੋਟਲਾਈਟ ਤੇ 9:30 ਵਜੇ ਚਰਚਾ ਕਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਧਿਆ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਅਰੋੜਾ। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होने का आश्वासन दिया। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने श्री मोदी को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में PV सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में

0: एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में आशा की जो किरण जगी थी वे आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
1: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: श्री मोदी ने कहा कि एनडीए राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।
1: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, सीएए का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन, एनडीए सरकार राष्ट्र हित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
0: इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, श्री मोदी इस महान राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए सही समय पर सही स्थान पर सही नेता हैं। गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता और एनडीए शासित सभी 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर श्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लैन ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से आर्थिक और विकासात्मक प्रगति का मार्गदर्शन किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और त्रिनिदाद तथा टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने ग्लोबल साउथ के लिए श्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल

0: ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
1: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के बारे में एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
3: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे PMEGP लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
2: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इनमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है।

0: रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। भारत में वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो इस अवधि से पिछले 12 वर्ष की तुलना में 169% अधिक है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में 2025-26 में 94 अरब डॉलर से अधिक का ऐतिहासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लगभग 42 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में तेज वर्षा का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपी की चियो पिनचियान को मात दी। उधर कार्डिफ में महिला T20 विश्व कप के वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 रन से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रधानमंत्री को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi assures aspirations of 140 crore Indians will definitely be fulfilled, says Viksit Bharat must be the dream of every single person. National Democratic Alliance lauds Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest serving elected Prime Minister. Union Cabinet approves second phase of Ahmedabad Metro Rail project, also gives nod to infrastructure projects in Amravati, Andhra Pradesh. Government approves 96 companies under third round of PLI scheme for textiles, nearly 13,000 crore rupees investment committed. Defence Ministry to procure 20 advanced jammers for Navy ships to enhance operational safety. And in badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma advanced to second round of women's singles event at Australian Open. Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, NDA, has always

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल, प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: सदियों पुराना इतिहास और उस इतिहास के पन्नों पर करवट लेता एक आधुनिक महाशक्ति का संकल्प। साल 2014 से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने देश को सिर्फ नीतियां नहीं दी बल्कि एक नया आत्मविश्वास दिया। आज का भारत थमने वाला भारत नहीं है। गांव से लेकर वैश्विक मंच तक, खेतों से लेकर अंतरिक्ष तक, सीमाओं की सुरक्षा से लेकर नारी सशक्तिकरण तक, भारत ने बदलाव की एक ऐसी कहानी लिखी जिसे दुनिया ने भी गौर से देखा और महसूस किया। आज का भारत केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है बल्कि तेजी से उभरती हुई एक वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, G20 की सफल अध्यक्षता, रक्षा उत्पादन में नई उपलब्धियां, ऑपरेशन सिंदूर जैसे निर्णायक कदम, डिजिटल इंडिया की क्रांति, किसानों और गरीबों के जीवन में बदलाव लाने वाली योजनाएं, इन सब ने एक नए भारत की तस्वीर गढ़ी है। ये है बदलता हुआ भारत, ये है निखरता हुआ भारत। साल 2014 से लेकर अब तक विकास के इस महायज्ञ में भारत ने हर क्षेत्र में जो लंबी छलांग लगाई है, आज हम उसका विश्लेषण करेंगे। और इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ दो बेहद प्रतिष्ठित और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर और देश के जाने माने मीडिया विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर केजी सुरेश। आप दोनों का आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
3: नमस्कार।
1: सबसे पहले शेखर जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। अगर चर्चा की शुरुआत हम विदेश नीति से करें, एक ऐसा विषय जहां भारत ने पिछले एक दशक में बहुत प्रगति की है, भारत की विदेश नीति में एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिला है पिछले एक दशकों में।

0: आज का भारत संकट के समय मूक दर्शक नहीं रहता, बल्कि यूक्रेन संकट से लेकर पश्चिम एशिया के तनाव तक अपना स्वतंत्र रुख रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की इस स्वतंत्र और मुखर विदेश नीति को कैसे देखते हैं?
1: बिल्कुल आनंद जी, ये पिछले 12 साल में भारत की जो लीडरशिप रही है, नेतृत्व कहा जाए, बड़े बड़े क्राइसिस में भारत की आवाज, भारत की अर्थशेप, भारत की कूटनीति, ये बहुत बदलाव आया है। वो रशिया यूक्रेन युद्ध हो या अभी जो चल रही है ईरान के युद्ध हो, जहां भारत की आवाज, भारत की कोशिश किसी तरह विश्व शांति लाने की बड़ी पैगाम लगी, इसीलिए हो रहा है कि आज की जो भारत है, ये भारत जो विश्व भर में एक प्रकार से देखा जाता है कि ये देश जो लोक कल्याण की बात करती है, केवल भारतीय लोगों की कल्याण नहीं है, विश्व कल्याण और विश्व शांति की हमेशा कोशिश रहती है। कई जगह पर हमने देखा है कि भारत की जो विचार, भारत की जो दृष्टिकोण, ये सारे वर्ल्ड के जितने लीडर्स हैं बहुत गंभीरता से सुनते हैं। वो आपके G7 के एक्सटेंडेड समिट हो, G23 की समिट हो, या जहां पे भी भारत UN जनरल असेंबली की प्रधानमंत्री की भाषण हो, या कोई बायलेटरल समिट हो जहां दोनों देशों के बीच में नेताओं की परस्पर जो बातचीत हो, हर जगह पर भारत की बात सुनने के लिए वर्ल्ड के जो प्राइम मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट भारत आए, और हमारी प्रधानमंत्री जब भी बाहर जाते हैं, और भारत की जो आर्थिक चेंज जो हो रहा है, एक प्रकार से सबके सामने एक एग्जाम्पल बन गया है। उदाहरण के लिए जिस तरह हमारी डिजिटल मिशन रहा है, डिजिटल पेमेंट की जो बात, ये G23 में सब नेताओं ने इसको एक मॉडल के रूप में देखा कि विश्व भर में कैसे गरीबों के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए कैसे हम इसको अपना सकते हैं। इस तरह कई चीजें जो है आप देख रहे हैं कि जहां पे स्ट्रेटेजिक विषय हो, जहां पे आपको लग रहा है कि भारत का भूमिका कि विश्व शांति के लिए, उसके लिए जो भूमिका कर सकते हैं, वो सारे देश भारत की ओर देख रहे हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि पहले इस तरह की भारत की भूमिका नहीं रही हो, लेकिन आज जिस गंभीरता से भारत की भूमिका ली जाती है, ये पहले कभी नहीं हुआ। उसका ज्यादा कारण हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व।
0: सुरेश जी, एक और क्षेत्र पिछले, अगर हम कहें कि 12 वर्षों में बहुत बदलाव के सफर पर आगे बढ़ा, वो है रक्षा क्षेत्र। रक्षा क्षेत्र में भारत कभी दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में गिना जाता था, लेकिन आज हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। तेजस, ब्रह्मोस और INS विक्रांत जैसे गौरव हमारे पास हैं, और दुनिया के कई देशों में हम निर्यात भी कर रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के इस सफर को आप कितनी बड़ी रणनीतिक जीत मानते हैं?
2: मैं तो समझता हूं कि अगर इस 12 वर्षों का माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल को देखेंगे, तो मैं इसमें 2-3 महत्वपूर्ण आयाम इसमें देखता हूं। जो एक आजादी, एक खुली छूट, या आप इसको कहें कि एक ऑटोनॉमी, स्वायत्तता जो हमारे सेनाओं को दी गई है कि वो विकट परिस्थितियों में उनका हाथ खोल दिए गए हैं, ये चाहे आपने गालवान में देखा हो या पाकिस्तान की तरफ जो सरहदें हैं वहां हमने देखी हो कि हमने हमारे फौजियों के जो हाथ बांध कर हमने उन सरहदों पर खड़ा किया था, उनके हाथ खोल दिए हैं, उनको ये अधिकार दिया है कि वो बीफिटिंग मैनर में जो है वो जवाब दे सकते हैं दुश्मन को, उनको कहीं भी हर एक जगह अनुमति लेने के चक्कर में कई दिनों तक आप जो है लोग इंतजार में रहते हैं और तब जाके निर्णय लिया जाता था। आज उनको ये हमारे आत्मरक्षा में कदम उठाने का उनको स्वायत्तता दी गई है, पहली बात। दूसरा, पूरा स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो उसमें CDS जैसे इंस्टीट्यूशन, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का इंस्टीट्यूशन बना दिया गया है ताकि एक बेहतर समन्वय तीनों सेनाओं में, थल सेना, वायु सेना, नौसेना, इन सब में जो है एक कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, इसके लिए जो है इंटीग्रेटेड जो कमांड की पूरी एक व्यवस्था की गई है, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि आज जिस तरीके से बहुत सारे, हमने यहाँ आपने भी उसका जिक्र किया कि विदेशों में आज कई देश, मैं भी अभी एक हाल ही में एक विदेशी मुल्क का देख रहा था कि वो किस तरीके से उनके परेड में आकाश के मिसाइल्स चल रहे हैं, पृथ्वी चल रहा है, पिनाका चल रहा है, जो पहले हम देखते थे कि हम जो बेचते थे वो सिर्फ एम्यूनिशन, गोलियां बेचते थे, और उसके जगह आज हम अपने एयरक्राफ्ट बेच रहे हैं। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे हथियारों की डिमांड पूरे विश्व में बढ़ गई है, और यही नहीं, हमने महिलाओं को जो महत्व दिया है, उनके भागीदारी, बराबर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोनों अफसर, जो वायुसेना और थल

0: सेना के जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे पूरे विश्व के सामने, भारत का प्रवक्ता बनकर खड़े हुए थे, वो हमारे महिला सेना के अधिकारी थे। तो महिलाओं को जो महत्व दिया गया है 26 जनवरी में, तो हमने सिर्फ महिलाओं को ही जो है सारा कमांड का नेतृत्व प्रदान करते हुए देखा, ये बहुत जरूरी था। तो मैं समझता हूं कि आमूलचूल परिवर्तन। आप अंत में ये भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत डिफेंस के महत्वपूर्ण विषयों को पर्यावरण के नाम पर रोक दिया गया था सरहदों में, खासकर जो उत्तर पूर्व में चीन के साथ जो सरहद है, इन सब इलाकों में जो बहुत ही दूर दराज के क्षेत्र थे, वहां हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने काफी कम कर दिया था कि पर्यावरण के दृष्टि से, पर्यावरण को बचाते हुए भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर को सरहद तक अपने सप्लाई लाइंस खुली रहे। अभी परसों ही हमने देखा कि जो जिला का जो आखिरी पॉइंट था उसको भी खोल दिया है, अब वो विश्व का सबसे बड़ा टनल होगा और निश्चित ही वो ऑल वेदर टनल होगा, चाहे कितनी भी सर्दी हो, बर्फबारी हो, आप देखेंगे कि उस टनल से हमारी फौज की सप्लाई बॉर्डर लाइन तक जाएगी। तो किसी भी तरीके से फौज के साथ, हमारे सेना के साथ, उनके जो हथियार है उसके साथ कहीं कोई समझौता नहीं किया गया है। बहुत जगह बहुत सारा अनुसंधान हो रहा है, शोध हो रहा है, नए नए हथियार डेवलप किए जा रहे हैं, मेक इन इंडिया पर बहुत जोर दिया गया है, निजी क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ावा दिया गया है। तो मैं एक पूरे दृष्टिकोण में एक परिवर्तन पिछले 12 साल में मैं देखता हूं।
1: शिखर जी, अगर हम बात भारत के बदलाव की करें और बात हम नए भारत की करें, तो इसमें सबसे अहम कड़ियों में से एक है अन्नदाता किसान। कृषि क्षेत्र में पारंपरिक तौर तरीकों को बदलकर, चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड की बात करें, फसल बीमा योजना की बात करें, पीएम किसान सम्मान निधि की बात करें, या फिर जो ड्रोन तकनीक है, जो नमो ड्रोन दीदी जैसी योजनाएं हैं, उससे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिली है, कितना बदलता हुआ किसान को आप देखते हैं पिछले 12 वर्षों में, किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव को?
2: देखिए, जो केंद्र सरकार की जो ये रवैया रही है किसान को लेकर, कि कैसे धीरे धीरे करके अपने किसान को कैसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो कोशिश है, उसी का एक अच्छा कह सकते हैं कि इनिशिएटिव जो रहा है, यानी सरकार की जो पॉलिसी, प्राइम मिनिस्टर की जो पॉलिसी रही है, बीज से लेकर मार्केट तक जो शुरू होती है, सीड मार्केट से लेकर, मतलब कैसे बीज से लेकर, तो उसके बाद किस तरह किसान को हाथ पकड़ के उनके पैर में खड़े होने के लिए जो कोशिश सरकार की तरफ से जो हेल्प, आपने किसान सम्मान निधि की बात की, किसान क्रेडिट कार्ड है, फिर दूसरी बात फर्टिलाइजर की जो आवश्यकता, और उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की भी बात हो रही है, और सबसे बड़ी बात है मार्केट एक्सेस, यानी नेट के जरिए मार्केट एक्सेस करना। अब जो शुरू, अभी जो आत्मनिर्भर भारत के जो बड़े कार्यक्रम में आप देख रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज के एक नेटवर्क बन रही है, उसके साथ साथ आपकी ग्रीन ट्रेन बनी है, यानी उनकी पैदावार को सीधा मार्केट पहुंचाने के लिए, वो कर्नाटक से दिल्ली हो या नासिक से कर्नाटक हो या उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, या पूर्व भारत से या पूर्व उत्तर पूर्व भारत से मुंबई तक, इस तरह की जो नेटवर्क बनी है केवल फार्मर की जो पैदावार को ले जाने की। और सबसे बड़ी बात जो इस बार प्रधानमंत्री बहुत जोर दे रहे हैं कि हाई वैल्यू क्रॉप, यानी जिसका मूल्य मार्केट में ज्यादा है, उसमें कई कई नए नए चीजों की बात हो रही है, साथ में दाल वगैरह का, यानी पल्सेस का प्रोडक्शन किस तरह बढ़ाया जाए, उसकी भी बड़ी कोशिश हो रही है, और MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार की हमेशा यही रहे कि जो कॉस्ट है उसे 150% ज्यादा उसको मिनिमम सपोर्ट देने की, यानी किसान को मार्केट दर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, अगर ना मिले उनके लिए एक सेफ्टी मैकेनिज्म MSP रही है। हर हम देख रहे हैं कि हर साल जैसे इनपुट की कॉस्ट बढ़ती जाती है, सरकार ने MSP को हमेशा रिवाइज करके बदला है। इस तरह की आप देखेंगे कि सॉइल कार्ड जिसकी बात आपने की, उसके साथ साथ जो नई टेक्निक है, जिन्हें आपने ड्रोन की बात की, ये जो सरकार का एक कार्यक्रम रहा है महिलाओं की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन ऑपरेट करने की जो ट्रेनिंग देकर, ड्रोन दीदी जिस तरह की लाखों संख्या में आज ड्रोन दीदियां गांव में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसमें पेस्टिसाइड की स्प्रे करना हो या जितनी फसल हुई है उसकी एस्टिमेट करना हो, ये सारे में साइंस साथ में लेके चल रहा है, उसमें अप टू डेट वेदर इंफॉर्मेशन भी दिया जा रहा है, यानी जो सूचना जो किसान को मिलनी चाहिए कि बारिश की अवस्था क्या है, बारिश होगी कि नहीं होगी, सही समय पर पानी सिंचाई कैसे मिलेगी, मतलब ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां प्रधानमंत्री के डायरेक्शन के अनुसार सरकार पॉलिसी ऐसी ट्यून की गई है कि किसान की कहीं भी जो चुनौती आती है वो

0: नेचुरल हो या मार्केट कारण हो, उसको सुलझाने में सरकार लगी रही है। और आज हम देख सकते हैं कितने स्कीम्स जो आए हैं, जितने स्कीम्स हैं वो सारे स्कीम्स में यही कोशिश है कि जो हमारे किसान भाई जो पहले से अभी उनकी जो तकलीफें एक एक करके दूर करने के लिए बहुत कोशिश की गई है।
1: सुरेश जी, पिछले 12 वर्षों में एक और फॉर्मूला काफी जोर पकड़ता नजर आया, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र। प्रधानमंत्री अक्सर मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं। डिजिटल इंडिया से लेकर बुनियादी ढांचे के विकास तक इस नीति ने देश के आम नागरिकों के जीवन और ईज ऑफ लिविंग को जिस तरीके से प्रभावित किया है, आपको लगता है वो एक नए भारत की नई कहानी की तरह है?
2: बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं भी। ये विदेश से एक राष्ट्राध्यक्ष आए थे और वो साधारण जो बाजार जिसको कहते हैं वहां उतरकर मुंबई में उन्होंने तस्वीरें खींची और उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से कि कम आय वाले लोगों में भी, छोटे से दुकान में भी, यानी कि रेड़ी पटरी जो लगी हुई थी उसमें भी यूपीआई पेमेंट हो रहा है। आज देश के गांव-गांव तक यूपीआई पेमेंट पहुंच चुका है और आप देखेंगे कि आज विदेश में कई मुल्क आज इसमें इस विषय में रुचि ले रहे हैं कि वे अपने देश में इस तरीके से कैसे कर सकते हैं। अन्य मुल्कों में पेमेंट ट्रांसफर का बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है और भारत में यूपीआई और भीम ऐप वगैरह की अपेक्षा से आज अगर देखेंगे तो जीवन कितना सरल हो गया है। खुले पैसे के लिए, पेमेंट के लिए किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। स्टार्टअप्स को इतना महत्व दिया गया है जो आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। जीवन इतना आसान, हम कभी हमारे यहाँ से भारतीय मूल के लोग विदेशों में जाके बसते थे तो एक कारण बताते थे कि भाई ईज ऑफ लिविंग है यहाँ। भारत में आज गांव-गांव में वही स्थिति है। सब कुछ जो है ई गवर्नेंस को इतना प्रमोट किया गया है, हर राज्य में आज हर तरह के स्टार्टअप्स घर तक आज खाना से लेकर क्या नहीं पहुंचता है। आज डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे एक एक व्यक्ति के और शायद विश्व का सबसे बड़ा 80 करोड़ के करीब लोगों को जो है आज हम सब्सिडाइज्ड राशन दे रहे हैं। आज जो है सोशल सिक्योरिटी नाम का चीज इस देश में कभी नहीं हुआ करती थी। आम व्यक्ति अगर बीमार पड़ गया तो वो सिर्फ सरकारी अस्पतालों के पर टोटली निर्भर होता था, न जहां उसे सहूलियत मिलती थी कुछ नहीं। आज आयुष्मान भारत जैसे योजनाएं पूरे देश में लगभग लागू हो गई है। बंगाल में कई वर्षों से नहीं था, अभी बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां भी लागू हो गई है, जिसके चलते हर व्यक्ति जो है आयुष्मान कार्ड जिसके भी पास है वो किसी भी निजी अस्पताल में जाके अपने कठिन से कठिन समस्याओं का निदान पा सकता है और सीधे सरकार जो है उन अस्पतालों को जो है उसको पेमेंट करते हैं। इससे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। और सबसे बड़ी बात, जो सड़कों का जाल, इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैलाया गया उसके चलते आज दूर दराज के क्षेत्रों में कभी सोच नहीं सकते थे, मैं अभी होके आया हूं, मैं देहरादून कभी 5-6 घंटे लगते थे और आज के तारीख में मैं मात्र 2.5 घंटे में देहरादून और 1.5 घंटे में हरिद्वार होके आया हूं। आप जरा सोचिए कि ये क्या कभी संभव माना जा सकता था कि आज, लेकिन इतना बड़ा जाल गांव-गांव में जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, एक्सप्रेसवे कि आज पूरा देश और इसका लाभ किसको मिल रहा है। आज निवेश जो है गांव-गांव तक पहुंच रहा है, उद्योगपति जो है आज दूर दराज के क्षेत्रों में भी अपने उद्योग लगा रहे हैं, किसान अपना जो सामग्री है उसको शहरों तक वो जल्दी से जल्दी पहुंचा सकता है, यातायात की सुविधाएं इतनी बेहतर हो गई है। आप देखेंगे कि रेलवे हो, वंदे भारत जैसे कई नए ट्रेन शुरू हुए हैं जिसके चलते बहुत सारे यातायात की सुविधाएं, प्रधानमंत्री ने हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक का जो योजना बनाई, उड़ान स्कीम, छोटे छोटे शहरों को आज जोड़ दिया गया हवाई नेटवर्क के माध्यम से। तो मैं समझता हूं कि जीवन काफी सरल हो गया है 12 साल में।
1: जी, कुछ और विषय शिखर जी हैं जिस पर हम चर्चा आपसे करना चाहेंगे, और एक विषय जो है वैश्विक व्यापार और आर्थिक कूटनीति का है। भारत ने हाल के वर्षों में यूएई, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय यूनियन के साथ जो है वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया है। पहले भारत को वैश्विक व्यापार समझौतों में थोड़ा झिझकने वाला देश माना जाता था। आर्थिक कूटनीति में आए इस आक्रामक और रणनीतिक बदलाव को आप नए भारत के नजरिए से कितना अहम मानते हैं?
0: प्रधानमंत्री जब उन्होंने एक आह्वान दिया कि वोकल फॉर ग्लोबल और पहले लोकल फॉर वोकल, यानी पहले लोकल जो हमारी जो एंटरप्रेन्योर्स की जो कोशिश है उसको पहले देश भर के जो मार्केट में पहुंचाना, उसके बाद विश्व भर जो मार्केट है उस पर पहुंचाना है। आपने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात की, अब हर कंट्री के साथ जिस तरह बातचीत हुई

0: भी बातचीत हुई है, यूरोपियन यूनियन हो, यूके हो, इन सबसे बात करके कि परस्पर कैसे, देखिए कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट की जिक्र होती है तब आपकी ताकत पर होती है, आपके पास क्या है जो विश्व को दे सकते, जिस देश यहाँ सामान बेचना चाहता है उनमें ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है, ऐसी क्या चीज है जो हमारे लिए जरूरत है जो यहाँ पर ना हो। तो ये इस हिसाब से आप देखेंगे जितनी ट्रेड एग्रीमेंट, कम से कम 20 से ज्यादा कंट्री से हमारी एग्रीमेंट हुई है और लगातार हमारी बातचीत जारी है अमेरिका के साथ भी। आपने देखा पिछले 1 साल से जिस तरह भारत और अमेरिका बीच में जो बातचीत रही है, पर पहले टैरिफ को लेकर जो एक समस्या खड़ी हुई, उसके बाद लगातार बातचीत, और दूसरी बात ऊर्जा को लेकर भी। देखिए ऊर्जा भी बड़ी चीज है, आज भारत ऊर्जा जितनी इंपोर्ट भी करती है उतनी स्पेशलाइज प्रोडक्ट बाहर बेचती भी है, मतलब यानी कच्चा तेल भारत आता है और स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम के बनकर बाहर जा रहा है, क्योंकि हमारी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है ये कैपेसिटी आज के तारीख पे अमेरिका से भी ज्यादा है, इसलिए अब भारतीय कंपनी जाके अमेरिका में रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। ये सारे चीजों देखने से जो ट्रेड की आपने बात किया, ये ट्रेड भारत की जो अंतर शक्ति जो है जिसको कहते हैं इनरेंट स्ट्रेंथ, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी बिजनेस की जो कैपेसिटी, ये सारी सबके लिए एक प्रकार से मौका आ रहा है, और इस मौके को आगे बढ़ाने के सरकार की जो कूटनीति रही है उसकी डिप्लोमेसी में आप देखेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रहा है कि किस तरह इकोनॉमिक कैसी हमारी बेनिफिट हो, देश को मिले, और हमारे जो जितने इंडस्ट्रीज है वो आपको कॉटेज इंडस्ट्री से लेकर हैंडलूम तक, टेक्सटाइल से लेकर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स तक, उसको कैसे आगे मार्केट पहुंचाने की काम सरकार लगातार करी आ रही है, उनके लिए कभी भी सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दे सकते में उसमें कोई सीमा ही नहीं है, आपको बैंक लोन हो, बैंक गारंटी हो, ये सारे चीजें देकर आज देखे यूनिकॉर्न की बात हो रही है, बड़े बड़े कंपनी स्टार्टअप बन रहे, ये सारे स्टार्टअप की तो मार्केट तो विश्व मार्केट है। तो इस तरह आप देखेंगे पिछले 12 साल में जो एक कॉन्फिडेंस आई है हमारे इंडस्ट्री में, हमारे बिजनेस कम्युनिटी में, कि हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं और करेंगे भी, ये दोनों मंत्र को लेकर जो आगे चल रहे हमारी इंडस्ट्री, उसका कारण यही है कि आज की जो सरकार, जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार, वो बिल्कुल वो जो नारा है मोदी है तो मुमकिन है, ये वाकई आप देखेंगे ये प्रैक्टिकल हो गया है, ये केवल एक स्लोगन नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है, ये वाकई ये सरकार किस तरह कदम लेकर, किस तरह प्रोग्राम चला के हर भारतीय को एक स्कोप दे रही है, एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि जिसमें आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ो, सरकार आपके साथ है। मैं मानता हूं ये 12 साल का उपलब्धि वही है, भारत की इंडस्ट्री पीछे नहीं है, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग चलती रही है, इसलिए तो बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं, केवल गरीब या मध्यम वर्ग या इनकी बात नहीं है या किसान की बात नहीं है, हर वर्ग की बात है, हर हर सेक्शन की बात है, हर भारतीय नागरिक की बात है एक तरफ, दूसरी तरफ राष्ट्र निर्माण यानी जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रही है, इसको देखकर तो बाकी देश भी देख रहे हैं। आज की तारीख में आप देखिए कई भी बार बाहर होके आइए, आप यूरोप चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, जब वापस आते हैं आपको लग रहा है जैसे दिल्ली पहुंचेंगे, एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तभी आपको लगता है के जो पहले एक प्रकार से एक इंप्रेशन था भाई बड़े बड़े देश है, इतने डेवलप्ड है, भारत को कब कब वहां पहुंचेंगे, ये वाले चीजें दूर होती जा रही है आनंद जी। जब भी आप लगता है कि भाई हम कहीं पीछे नहीं है, अब आगे बढ़ रहे हैं, आज के तारीख में 20 से ज्यादा शहरों में हमारी मेट्रो ट्रेन चल रही है, उसकी टेक्नोलॉजी आप देख लीजिए, ये टेक्नोलॉजी जॉइंटली डेवलप्ड हुआ है और ये लेटेस्ट भी है। आज दिल्ली में अगर मेट्रो नेटवर्क इतना बड़ा है, जो मेट्रो डिब्बे जो चल रहे हैं उसमें अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रहा है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज लंदन में अवेलेबल नहीं है, पेरिस में नहीं है, न्यूयॉर्क में नहीं है, हमारी यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चलती है। और लगातार जो कोशिश है कि भाई हम जब राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे, राष्ट्र स्वाभिमान की बात करेंगे, हम पूरे के पूरे कोशिश, पूरे के पूरे ताकत लगा के एकजुट होके सरकार और नागरिक और देश प्रथम ये मन में रख के काम करने की जो एक माहौल बनी है, उसका कारण है ये 12 साल की प्रधानमंत्री की नेतृत्व।
1: सुरेश जी, एक मीडिया और सांस्कृतिक विश्लेषक के तौर पर आपने देखा होगा कि पिछले दशक में भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर का भरपूर इस्तेमाल किया है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो, वैश्विक मंचों पर आयुर्वेद को बढ़ावा देना हो, या फिर ग्लोबल साउथ की आवाज बनना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास भी और विरासत भी, इस नैरेटिव ने वैश्विक पटल पर भारतीयों की सांस्कृतिक पहचान को किस तरह पुनर्भाषित किया है?

0: देखिए, सबसे पहले तो आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जब अपना कार्यकाल शुरू हुआ, ज्यादातर देशों में जब वो जाते थे तो वो भगवद गीता की कॉपी देते थे। कुछ भारतीय एक पहचान, भारतीय अस्मिता, भारत की छवि, ये आज इतना भारत सर्वप्रथम हो गया है, भारतीय सर्वप्रथम हो गए हैं। प्रधानमंत्री जिस भी देश में जाते हैं, जो भारतीय मूल के जो लोग हैं, प्रवासी भारतीय हैं, उनसे वो मिलते हैं, उनके उस देश में जो भूमिका है उसके बारे में बात करते हैं। आप देखेंगे कि पूरे विश्व भर में भारतीयों को भी संगठित करके भारत के लिए वे क्या कर सकते हैं, इस दिशा में प्रयास किया है। भारत के संस्कृति को, भारत के संगीत को, भारत के सभ्यता को वैश्विक पटल पर किस तरीके से लाया जाए, आपने जिक्र किया। अभी अगले हफ्ते ही, जल्दी ही हमारे बीच में जून 21 आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और शायद ही विश्व में ऐसा कोई प्रस्ताव है जो सबसे ज्यादा राष्ट्र के लोगों ने एक साथ समर्थन किया और उसको जो है स्वीकार किया। आज पूरे विश्व में जो है योग दिवस मनाया जाता है। भारत जो है अपने पर्यटन के क्षेत्र में, अभी आप देखिए कि चीता जैसे जानवर जो दुर्लभ, क्या हमारे देश से बिल्कुल गायब हो गए थे, जिनकी समाप्ति हो गई थी, उनको दोबारा कूनो मध्य प्रदेश में इसको हमने रीइंट्रोड्यूस किया। हमने देश के उस विरासत को, देश के ऐसे कई ग्रंथ, कई मूर्तियां जो पूरे विश्व के म्यूजियम्स में पड़े हुए थे, उनको वापस ससम्मान, चाहे वो भगवान बुद्ध से संबंधित हो, चाहे देवी देवताओं से संबंधित हो, मंदिरों के, वो उन सब को लेकर आए। और क्या इससे बेहतर काम हो सकता है कि एक बहुत एक एक विषय जिसको लेकर पूरे समाज में एक तरह से एक कटुता थी, उस विषय को का एक समाधान कोर्ट के जरिए निकालकर उसका शीघ्रातिशीघ्र, जो राम मंदिर का अयोध्या में जो निर्माण हुआ वो इसी कार्यकाल में हुआ, जिससे एक बहुत बड़ा लंबित मामला जो समाज और राष्ट्र को और वैश्विक स्तर पर हमारा जो है एक विषय बन चुका था, उसका समाधान, स्थायी समाधान हमने देखा। तो ये मैं समझता हूं कि जिससे भारत की विरासत आज पूरे विश्व में जो है इसको मनाया जा रहा है, पूरे भारत का जो है, हम लोग आज भारतीयता पर जो गर्व करते हैं, आज डीकोलोनाइजेशन, औपनिवेशिकतावाद से हटकर आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो कॉलोनियल, जो हमारे यहाँ, आप चाहे वो एक वॉर मेमोरियल क्यों ना हो, इंडिया गेट, हम सब उसको बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उसमें विश्व युद्ध के सेनानियों का नाम लगे हुए थे, लेकिन भारत के वो सेनानी जिन्होंने 1947 से लेकर और सब युद्धों में जिन्होंने अपना बलिदान, सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके लिए एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक वो हमने बनाया। इसी प्रकार हमने जो पुराने कॉलोनियल इस शहर को जो कि भी पहचान थी, वो ज्यादातर आक्रांताओं द्वारा जो दी गई, जो भवन थे या बिल्डिंग थे, उन्हीं पर हम लोग जो है, हमारे दिल्ली में हमारी अपनी विरासत क्या थी, तो इसलिए सेंट्रल विस्टा जैसे, जहां नया संसद भवन बना, जहां नया सेवा तीर्थ प्रधानमंत्री का ये बना, और कितने सड़कों का जो हमारे गुलामी के प्रतीक थे उनका नाम बदलकर जो है हमको जो है, हमने देखा कि राजपथ को जो है हमने उसको, चाहे वो प्रधानमंत्री का लोक कल्याण मार्ग हो या हमने जो है सेवा तीर्थ की स्थापना किया हो, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत के अपने पहचान, अपना जो विरासत है
1: जी
0: उसको जो है पुनः स्थापित करने का एक प्रयास किया गया। तो मैं समझता हूं कि आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी, क्योंकि मैं एक शिक्षाविद भी हूं और शिक्षा से जुड़ा रहा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुई है उसके तहत भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से हम सबको अवगत कराने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को गर्व रहे कि हर विषय को लेकर उसमें भारत का क्या योगदान रहा, जिसको भूला जा चुका था, जिसको ये बताया जा रहा था
1: जी
0: कि
1: सर,
0: सारा ज्ञान पश्चिम से आया है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है।
1: आखिर में एक बहुत छोटा सवाल शेखर जी आपसे समझना चाहेंगे। जब भी हम स्वर्णिम अतीत की बात करते हैं तो वो मजबूत वर्तमान की तरफ आगे बढ़ता है। जब वर्तमान मजबूत होता है तो हम एक सुनहरे भविष्य की परिकल्पना करते हैं, और यहां परिकल्पना 2047 के विकसित भारत की है। इस नए भारत की मजबूत नींव पर, विकसित भारत की बुलंद इमारत को आप किस तरह देखते हैं? कार्यक्रम में समय कम है, बहुत संक्षेप में।
2: बिल्कुल विकसित भाव, आपने सही कहा कि जो भी फैसले आज लिए जा रहे हैं, जो भी कार्य

0: क्रम आज लागू किया जा रहा है, जो भी नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं वो केवल यही दृष्टि से कि आज की कदम कल की जो दिशा है, जहां मंजिल है वहां पहुंचने की बात है। और सारी चीजें जो बड़ी बात है वो आनंद जी मैं मानता हूं प्रधानमंत्री की कोशिश हर पहलू पे एक ईमानदारी से जुड़ा हुआ है, एक सिंसियर एफर्ट है कि भारत कैसे आगे बढ़े, भारतीयों की जीवन कैसे और सरल हो जाए, और भारतीय भविष्य, हर नागरिक का भविष्य कैसे उज्जवल हो, इसकी कोशिश पर सरकार लगा हुआ है बिना एक दिन छुट्टी के।
1: जी, हर युग की अपनी एक पहचान होती है। कुछ युग परिवर्तन के साक्षी बनते हैं और कुछ परिवर्तन के निर्माता। पिछले एक दशक में भारत ने अनेक क्षेत्रों में नई उपलब्धियों के आयाम स्थापित किए हैं। वैश्विक कूटनीति से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक, डिजिटल क्रांति से लेकर बुनियादी ढांचे के विस्तार तक, आत्मनिर्भरता से लेकर विकसित भारत के संकल्प तक, देश ने एक नई ऊर्जा और एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए केजी सुरेश जी आपका और शेखर अय्यर आपका बहुत बहुत आभार।
2: धन्यवाद
0: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल। प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा, इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है। असि आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले 10 बजने हुण पेश ने मुख खबरां। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के सिलसिले च राष्ट्रीय लोकतंत्र गठजोड़ की मीटिंग अज नवी दिल्ली च हुई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अज एक मता पास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नू सब तो लंबे समय तक सेवा करन वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बनन ते वधाई दित्ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों अज भारत दे सब तो वध समय तक सेवा निभाउण वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बनन ते देश विदेश तो वधाई देण दा सिलसिला जारी है। सरकार वालों राज्यां ते केंद्र शासित प्रदेशां लई 95,692 करोड़ दे अंतरिम बजट अलाटमेंट की तजवीज। भारत सरकार ने पंजाब दे सोहनी सीजन 2026 लई यूरिया की मजबूत उपलब्धता नू यकीनी बनाया। सूबे विच यूरिया की कोई कमी नहीं। पंजाब सरकार वालों पटियाला विच हाइब्रिड सफाई मॉडल का आगाज। सूबे का सब तो साफ सुथरा शहर बनाने लई 30 दिन का टीचा मिथ्या। समाजिक सुरक्षा महिला अते बाल विकास विभाग वालों जिला मानसा दी एक बुजुर्ग औरत दी शिकायत ते तुरंत दखल दिंदिया मामले दी जांच, मुलजम नू कीता गिरफ्तार। पंजाब पुलिस मुखी गौरव यादव ने पंजाब पुलिस दियां महिला पुलिस अधिकारियां लई 93 2-पहिया इलैक्ट्रिक वाहनां नू रवाना कीता। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों पाकिस्तान स्थित इतिहासिक गुरुधामां दे दर्शनां लई सिख श्रद्धालुआं दा जत्था जयकारियां दी गूंज नाल रवाना होया। हरियाणा राज महिला कमिशन दी चेयरमैन रेनू भाटिया ने अपने अहुदे तों अस्तीफा दिता अते अफगानिस्तान खिलाफ 3 मैचां दी एक रोजा लड़ी तों पहला हार्दिक पंड्या सट कारण टीम तों बाहर होए। सो ACG मुख खबरां। असि आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों बोल रहे हां। हुण पेश प्रोग्राम थोड़ी फरमाइश।

0: हाँ जी, सूर्य और चंदा
1: जी
0: ते गीदे बोला जी, तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता हूँ।
1: ते लो जी, सुनो फिर अपनी खूबसूरत इस फरमाइश नू। बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ा कॉल करने दे ले।
0: थैंक यू जी।

0: एक दो तीन हो जाती है, एक दो तीन हो जाती।
1: थोड़ी फरमाइश प्रोग्राम तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र ते। व्हाट्सएप राही जिहड़ी फरमाइशां साडे कोल पहुंचियां ने जी, फरमाइशां वल वधदे आं। इह फरमाइश सानूं भेजी है रमन वर्मा होना ने बुरजा तों, लोको कलोनी लोहारू हरियाणा तों सानूं फरमाइश भेजे ने बिल्लू सिंह चंडालिया, लक्ष्मी देवी सुरेंद्र कुमार चंडालिया, बरखा योगेंद्र कुमार, नरेंद्र कुमार ते इन्हां दे बहुत सारे साथी सानूं फरमाइश भेजे ने। बागपत उत्तर प्रदेश तों संजय टिंगिया, नमन टिंगिया ते अपा टिंगिया, ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष ते इन्हां दे बहुत सारे साथी सानू फरमाइश भेज रहे ने। पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश तो, नर्मदा पाक मंगलवेड़ा तो सानू फरमाइश भेजी है मास्टर अलिम पटेल, मुजाहिद पटेल ते नदीम पटेल होना ने। मखू तो बिला बजाज, हैप्पी कपूर, फिरोजपुरी, मनीष बजाज ते इन्हां दे बहुत सारे साथी। सदर बाजार कुरावली तो अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार ते सोनम वर्मा। आओ सुनते इन्हां सारे दी मिली जुली फरमाइश। फिल्म जूली का गीत, आवाज़ है जी किशोर कुमार ते लता मंगेशकर दी।

आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र ते तुसी इस वेले सुन रहे जी प्रोग्राम थोड़ी फरमाइश। फरमाइशी सिलसिला बिल्कुल जारी है जी, ते व्हाट्सएप राही जिहड़ी फरमाइश साढ़े कोल पहुंचिया ने जी, वध्दे उहनां फरमाइशां वल। कंगनपुर तों फरमाइश भेजी है जी जाफर मेव, अब्दुल गफूर, मुहम्मद शरवर होना ने, गिद्दड़बाहा तों मनजीत तनेजा, परवीन, पायल, नीता शाह, हिना शाह ते इन्हां दे बहुत सारे साथी सानूं फरमाइश भेज रहे ने। तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, भूमिका ते गगनदीप थांदी सानू फरमाइश भेज रहे ने। पिंड ते डाकखाना टोरोवाल, तहसील बलाजौर, जिला नवांशहर तो। अस्तुपुरा जिला माऊ तो मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर तो आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आज़ाद ते इन्हां ते बहुत सारे साथी सानूं फरमाइश भेज रहे ने जी। महसगेट नाभा तो ज्योति राणी, कैरव ते गुरमन सानूं फरमाइश

déjeuner. दाऊद सरा सहारनपुर तो सानू फरमाइश भेजी है अनवर साबरी, शनो साबरी, मुदस्सिर मुजक्कर और जरीफ अंसारी होना ने। अवतार सिंह पन्नू सानू फरमाइश भेज रहे ने मथोला पिंड तो डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर, पिंड कल्याण मलका, जिला बठिंडा तो अमृतपाल सिंह रामगढ़िया, परमिंदर सचनूर ते मनिंदर कौर। पिंड फ्रांसी जिला हिसार तो राजकुमार डोडी, प्रमोद कुमार डोडी, पुष्पेंद्र कुमार डोडी ते इन्होंने बहुत सारे साथी सानू फरमाइश भेज रहे ने। पिंड हीरा वाली फाजिलका तो सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु ते इन्होंने बहुत सारे साथी। मलियाना सरदना मेरठ तो अनिल जैन, जैन संयम जैन, मुस्कान जैन, जीवियम जैन ते इन्हां दे बहुत सारे साथी। आओ हुण सुणदे हां सारयां दी मिली जुली फरमाइश, तलाश फिल्म दा गीत लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी ते साथियां दी आवाज़ च।

0: ਇਸ ਗੀਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਯਾਨੀ 11 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ ਅਤੇ 11:05 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेल लेयन ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वे

0: आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के वास्ते प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत हो गए। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली यानी GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली NCR क्षेत्र में अगले 3 दिनों में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की आशंका है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को हराया जबकि तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियू पिनचियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, that is NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said, "The people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress." He said, "For the first time, the people of the country have seen that when a government is run with a right intention, development also takes place at a rapid pace." He said, "The lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right."
2: Bharat ke logon ne pehli baar ye dekha hai ki jab sahi niyat se sarkar chalti hai to tez gati se vikas bhi hota hai. एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: The Prime Minister added that the people of the country have understood the importance of political stability at the national level. He said it is a testament to the maturity of the people that they have given him the opportunity to serve them for such a long time. Earlier, the NDA today adopted a resolution lauding Prime Minister Narendra Modi on achieving the feat of becoming India's longest-serving elected Prime Minister. During the conclave of NDA at Bharat Mandapam in New Delhi, a special political resolution was moved praising Mr. Modi's leadership. Wishes are pouring in from across the world as PM Narendra Modi has become India's longest-serving elected Prime Minister. European Commission President Ursula von der Leyen stated that India under Mr. Modi's leadership has landed on the moon and is shooting for the stars. Italian Prime Minister Giorgia Meloni also expressed readiness to work with Prime Minister Modi in creating new opportunities for the people of the two nations. Extending his wishes, South Korean President Lee Jae-myung stated that PM Modi has guided India's economic and developmental progress over the years and played a key role in elevating India's global stature. The Union Cabinet has approved Phase 2A.

जी दोस्तों, तुसी एंजॉय कर रहे हो प्रोग्राम सौगात अपने दोस्त कमल दे नाल आकाशवाणी पंजाब दे। ते तुसी भी साढ़े वेड़े अपने फरमाइशी गीतां दी फरमाइश लैके पहुँच सकते हो। साडा नंबर है 0812-143-171। यही नंबर मिला के साढ़े वेड़े साढ़े कॉलर दोस्त पहुँच चुके ने। आओ फिर आपका कैम करते हैं उन्होंने नाल। हैलो, सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे ने ते केड़ी जगह तो बोल रहे ने? खिंडा साहब, बहुत बहुत स्वागत है पूरे ढोल ढमके।

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे ने? केड़ी जगह तो बोल रहे ने?
1: सुखबीर सिंह छाजली बोलता है संगरूर वालों।
0: सो छाजली जी, बहुत बहुत स्वागत है, पूरे ढोल ढमके दे नाल स्वागत है। बस भंगड़ा पा दियो।
1: जरूर वाह जी वाह, बहुत वधिया ढोल बजाने तुसीं जी।
0: धन्यवाद जी, होर ठीक ठाक हो?
1: हाँ ठीक है जी, कम दे बागे जी थक्के
0: ठीक है सर,
1: धन्यवाद, शुक्रिया।

0: क्या बात है। हेलो,
1: हेलो कमल जी, सत श्री अकाल।
0: सत श्री अकाल जी। कौन बोल रहे ने ते केड़ी जगह तो बोल रहे ने?
1: जी मनजीत कौर बोल रही हैं, दिल्ली तो। जी सुनाओ की हाल चाल है।
0: बहुत वधिया मनजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है, पूरे ढोल ढमके दे नाल स्वागत है। फिर गर्मी का की हाल चाल है दिल्ली च? पहला तो यह सुनो।
1: गर्मी
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: बहुत गर्मी पै रही है।

0: बिल्कुल
1: और आप
0: चलो,
1: भी देखो, बाहर नो देखो, दे गर्म गर्म लगता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी। और जे वैसे गर्मी ज्यादा वाजे तो बारिश भी आने वाली होंगी है, तो 1-2 दिन तक मैं
1: जल्दी
0: लगता आई
1: जल्दी
0: जाएगी, तो जिनी
1: हाँ
0: देर तक
1: जल्दी
0: नहीं
1: है।
0: आती असं गीतों के जरिए ठंडक पाने की कोशिश करते हैं। तो दसो फिर कि गीत सुनाइए।
1: गीत सुना दो, बत्ती बाल के बनेरे उसे रखने हैं। आहो
0: कि बदल ना लंघ जाए, ठीक है ना।
1: बदल आ जाए फिर
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: बत्ती बेच के।
0: बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी कॉल करने के लिए।
1: तुहाडा भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक
0: धन्यवाद
1: यू।
0: जी।

क्या बात है जी, क्या बात है। हेलो हेलो हेलो हेलो। सो साढ़े नाल साढ़े कॉलर दोस्त जुड़े सी फोन दे जरिए, पर लगदा कॉल डिसकनैक्ट हो गई। तो उन्होंने लिए फिर मैं एक गीत अपने वालों प्ले करदा। उम्मीद है उन्होंने एक गीत जरूर पसंद आएगा।

0: क्या बात है जी, क्या बात है। हेलो
1: हेलो,
0: हेलो, हाँ जी,
1: सत श्री अकाल जी। दिलबाग सिंह बोल रहा। हाँ
0: सत श्री अकाल जी। दिलबाग सिंह जी, कड़ी जगह तो बोल रहे हो?
1: जी, मैं ब्रिटिश कोलंबिया कनेडा तो बोलते। मैं तो मेरा फ्रेंड दे नाल अभी काम कर रहे हैं। वैसे रेलवे पंजाब तो आ मुल्तान पाकिस्तान तो।
0: अच्छा जी, क्या बात है। तो
1: हाँ
0: बहुत
1: जी,
0: बहुत बहुत स्वागत जी, पूरे ढोल ढमक्के के नाल स्वागत है। नहीं,
1: थैंक यू जी।
0: पाकिस्तानी पंजाब दे हुण तुसी पाकिस्तानी पंजाब च रहिंदे हो जां पिछोकड़ पंजाबी पाकिस्तानी पंजाब दा सगा?
1: नहीं, मेरे नाल जेड़ा मुंडा इत्थे काम करदा वो पाकिस्तान पंजाब तो आ, मैं इंडिया तो आ, मैं मोगे तो आ,
0: अच्छा, मोगे तो। अच्छा,
1: रहिंदे
0: दो
1: दोवे कनेडा च, असी ब्रिटिश
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: कोलंबिया च।
0: दोनों पंजाबी, एक लहिंदा पंजाबी ते एक चढ़दा पंजाबी।
1: एक लहिंदा पंजाबी ते एक चढ़दा पंजाबी है, दोवे पंजाबी।
0: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ते दसो फिर केड़ा की
1: हाँ
0: सुनाइए
1: जी,
0: जी।
1: दिलशाद अख्तर का सुना दो जी गाना। सानू अथरू बहानी है फिर वही
0: सानू परदेसियां नु याद करके, क्या बात है। ते लो जी, ते
1: हाँ जी, हाँ
0: परदेसी
1: जी,
0: सॉन्ग सुनते पए ने साडे कोलों।
1: हाँ जी।
0: ते
1: बाकी
0: लो जी,
1: सारे सुनने वाले नु सत श्री अकाल साडे दोहां वल्लों।
0: हाँ जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। ते लो जी, एंजॉय करते हैं
1: हाँ
0: गीत।
1: जी।

0: क्या बात है, क्या बात है जी। दिलशाद अख्तर हुणा दा भी एक अपना ही युग सी। सो आओ अपने अगले कॉलर दोस्त नाल गलबात करते हैं। हैलो।
1: जिस यार दे यार हजार होन,
0: आहा,
1: ओनू अपना यार ना समझी।
0: क्या बात है।
1: जेड़ा हद तो ज्यादा प्यार करे,
0: आहा,
1: ओदे प्यार नू प्यार ना समझी। जेड़ा होवे यार ते देवी हार, ओदी हार नू हार ना समझी। तेरा जितना यार गरीब होवे, ओदी संगत बेकार ना समझी। सर जी, प्यार भरी सत्ती।

दोस्तों इस गीत नाल ही मैनू यानी कमल शर्मा नूं प्रोग्राम सौगात हुण इत्थे ही समेटण दी दिओ इजाजत। धन्नवाद, फिर मिलांगे। तद तक लई रब राखा। जी दोस्तों, हुणे तुसीं इंजॉय कर रहे सी प्रोग्राम सौगात आकाशवाणी पंजाब ते। हुण तुसीं सुणोगे पंजाबी मेलोडियस गीत।

हर साचा सिमरह पाई, साध संग सदा सुख पाईए, हर बिसर न कभू जाई। ए फरमान साध संगत विच जाके सच्चे अकाल पुरख नू सिमरन दी महिमा बयान करदा है। इसे करके प्रभु प्यार दी तांग रखन वालियां जीव रूपी स्त्रियां सत पुरशां दी संगत दी लोचा कर दियां हन, ताकि सत संगत विच जाके प्रभु सिमरन द्वारा परम गति प्राप्त कीती जा सके। ऐसी मांग गोबिंद ते, टहल संतन की संग साधु का, हर नामा जप परम गते। सर्वण करदे आ भाई गुरदयाल सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन की

0: ऐसी मांग गोबिंद ते, टहल संतन की संग साधु का हर नामा जप परम गते। इस शब्द गायन कीता सी पाई गुरदयाल सिंह ते उनदे रागी जत्थे ने। उत्तम संगत उत्तम होवै, गुण को तावै अवगण तोवै। इस वाक अनुसार उत्तम संगत करन दी ही हिदायत है, अर्थात गुरमुख जना दी संगत। गुरमत विच ए वी ताड़ना कीती गई है कि कुछ संगत तो गुरेज कीता जावे, अर्थात निंदकां दुखियां साखतां दी संगत ना कीती जावे। मते ए एक मनुखी जामा जो प्राप्त होया है उसनू किते विकारां दी मैल ही ना लग जावे। कबीर, साकत संग ना कीजिए, दूरह जाइए पाग। सुनदे हां अजीत सिंह रूप तारा होरां पासों ए वार्ता।
1: साकत दा भावे रब तो टुटिया होया मनुख, जां रब्बी रहमतां तों सखणा मनमुख। शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग 1371 उपर भगत कबीर जी गुरमुख जना नूं ताकीद करदे ने, कबीर साकत संग न कीजिए दूर रह जाइए भाग। कबीर जी समझाउंदे ने कि गुरु प्यारे गुरमुखां नूं साकत मनुखां भाव गुरु तों बेमुख मनमुखां दा संग नहीं करना चाहीदा। गुरु नालों टुटे हुए गुरु प्यार तों अणभिज बंदियां दी सोहबत नहीं करनी चाहीदी, सगों अजिहे मनुखां नूं वेखदिआं ही दूर चले जाणा चाहीदा है। क्यों जो बासन कारो परसीऐ तो किछ लागै दाग। भगत कबीर जी अजिहा ना करने दा कारण समझाउंदे ने कि जिवें बासन कारो भाव काले भांडे नूं छोहण नाल ही कुछ दाग साडे कपड़िआं जां शरीर ते आण लगदे ने, इसे तरह गुरु तों बेमुखां बेगुरियां जां साकतां दी सोहबत जां संगत कीतियां गुरमुखां दी पवित्र आत्मा ते बेमुख मलीनता दे दाग लग जांदे ने। गुरमुख व्यक्ति भी साध संगत तों दूर हो जांदा है, गुरु प्रीत दी रूहानियत विच विघन आण पैंदे ने। गुरु प्यारियां लई साकत अते गुरमुख विच अंतर नूं समझ लैणा भी बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु साहिबान ने साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच अनेकां वार साकत दे औगणा अते साकत दे संग करन नाल उपजण वाले विकारां दी निशानदेही करवाई है। गुरबाणी आशे दी अगम्मी रोशनी विच इस मनुखा जन्म दा अंतम मनोरथ उस प्रभु प्रीतम परमात्मा जी नाल एकमिक हुंदिआं उसे विच अभेद हो जाणा है। होमें ग्रसे गुरु प्यार ते गुरु बख्शिशां तों सखणे साकत मनुख अपने होमें धारी चा

ऐसे लोगन स्यो क्या कहिए, जो प्रभ किए पगत तिबाहज, तिनते सदा डराने रही है। इस शब्द गायन की तासी पाई निर्मल सिंह ते उनादे रागी जत्थे ने। मनुखा जन्म नू सफल करन वास्ते नौवें गुरुदेव अकाल पुरख दी सुध रखण दी हिदायत करदे हुए फरमाउंदे ने कि नता प्रति कटदी हुई इस औद नू बिरथा नहीं गवाउणा चाहीदा। उस अकाल पुरख नू चेते रखना चाहीदा है। प्राणी नारायण सुध लेह, छिन छिन औद कटह निसबासर, वृथा जात है देह। सरवण करदे आ भाई अमरीक सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ये शब्द।

प्राणी नारायण सुदलेह छिन छिन औद कटै निस्बासर वृथा जात है देह। इस शब्द का गायन कीता सी भाई अमरीक सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

रंच करेत खेत तन निर्मत दुर्लभ दे स्वार्थरी खान पान सौदे सुख पुंचत संकट काट बिपत हरी मात पिता भाई यार बंद बूझण की सब सूझ परी वर्धमान होवत नित प्रतिदिन आवत निकट बिखम जरी रे गुणहीन दीन माया क्रिम सिमर स्वामी एक करी कर गए ले हो कृपाल कृपा निध

रे मनमूस बिला मह गर्भत करतब करत महामुगना संपत दोल झोल संग झूलत माया मगन भ्रमत कुगना सुत बनिता साजन सुख बंदप तास्यो मोह बड़्यो सो कना बोयो बीज अहंग मम अंकुर बीतत औध करत अगना मृत मजार पसार मुख निरखत पुंचत पुगत पूख पुखना सिमर गोपाल दयाल सत संगत नानक जग जानत सुपना सिमर गोपाल दयाल।

माया मत कहाँ लो गारो, शतर न पतर न चौर न चावर, बहती जात हृदय ना बिचारो, रथ न आसन गज सिंघासन, शिन में त्यागत नांग सिदारो, सूर न वीर न मीर न खानम, संग न को दिष्ट निहारो, कोट न ओट न कोस न छोटा, करत बिकार दहु कर चारो, मित्र न पुत्र कृतर साजन साख, उल्टत जात बिरह की शार, दीन दयाल पुरख प्रपूरण, छिन छिन सिमरो अगम अपारो, श्रीपतनाथ शरण नानक।

ब्रह्मा दीक्षित संत मुनीसर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंद्र मुनिंदर खोज ते गोरख तरन गगन आ

प्रेम रस भक्ति हर जनता के दर्श समावत तिसे त्याग आन को जाचा मुख दंत रसन सगल कस जावत रे मन मूर सिमर सुखदा।

0: कार सर्व प्रो खंडन गुणकारी काम क्रोध मद मत सर तृष्णा बिन सजाहे हर नाम उच्चारी इशनान दान तापन सुच किरिया चरण कमल हिरदे प्रभ तारी साजन मीत सखा हर बंद जी तान प्रभ प्राण अदारी ओट गही स्वामी समर्थ नानक दास सदा बलहारी।
1: आवत कट्यो ना जात प्रेम रस चरण कमल संग दामन बंद्यो ना जात विदे मन

0: खटवा पूजा चकर करत सौंपा का अनेक पांत था टे कर थटुआ।
1: कन हर बूंद बसो रुमावल खुशम बसंत गणंत न आवे राव सास किरण उदर सागर को गंग तरा।

का जन्म मरण दुख हो ऐसे पदख संबंधी नूर अरसह कुरसह तुद डिठे सचे पात सहा मल जन्म जन्म सजन सचा पात साहु सिर सहांद जिस पास बैठे आ सोही सब

सजण सचा पात साहु सिर सहांद जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहो। सतनाम श्री वा

दुख हरता एह विद को स्वामी तै काहे बिसराया। जब हे शरण गहे कृपा निद गज ग्रह ते छूटा।

छली चंद्राव कौन कृष्ण जादम भया पार जात गोपी ले आया विद्रावन में रंग किया कल में वेद थर्बण हुआ ना खुदाई लो भया नील वस्त्र ने कपड़े पहरे त्रिक पठानी अमल किया चारे वेद हुए सचे पढ़े गणित ने चार विचार पाओ।

बोलो जी वाहेगुरु। एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथमा।

0: जल न जाए, धन समान सुनान का जुगल चले पाए। चौकन मुलन आया बह चौके पाया, सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थिया। ओह मुआ चढ़ पया बीत गया महला पहला।
1: लख चोरियां लख जारियां लख कुड़ियां लगा, लख ठगियां पैना मियां रिन जी नाल तक पाहो। कतिए बाउन मटे आए, कोह बकरा रिन खाया सबको आखे पाए। होए प्राणा सुटिए फिफर पइए होर, नानक तगना तुटई जे तग होवे जोर। महला दूजा
0: महला पहला, नाय मने पतूप जै साला ही सच सूत। दरगेंद्र पइए तगना टूट सपूत महला पहला।
1: तगना इंद्री तगना नारी भर के थपे ने दाड़ी, तगना पैरी तगना थी तगना जेवे तगना थी। वे तगा आपे वते बट तगे वरा खते, ले फाड़ करे भी आ कड़का गल दसेरा। सुन वेखो लोका यो बिडान, मने अंदा दाऊं सुजान।

साहिब हो जाल कृपा करे ता साई कार पुराई सी सौ सेवक सेवा करे जिसन हुक्म मनाई सी हुक्म मन्या होवे प्रवान ता कसमे का महल पाई सी कसमे पावे सो करे मनोचंदा सो फल पाई सी ता दरगे पैंदा जाय सी ता दरगे पैंदा जाय सी।

0: पूजा बुमाली तान मिले छा खाई अंतर पूजा पड़क ते बसन तुरका भाई छोटी ले पाखंडा नाम ले जाहे तरंदा महला पहला
1: मानस खाने करे निवाज